सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 20, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रही हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बारी बारी से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30

0: जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. Both leaders will be reviewing the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation. Highlighting the shared democratic values and maritime ties between the two nations, Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को। मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम शायद दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
1: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Prime Minister Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Later in the day, Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its sixth Project 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 into its eastern fleet at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by the Defence Minister Rajnath Singh. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, BOPS, along with the Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम खेती की बातें में आज आप जानेंगे बरसात में गाय भैंसों का थैनाला रोग और इससे हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां।

बरसात के दौरान पशुपालक भाइयों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह खासे परेशान हो जाते हैं। पशुपालक भाइयों को इसी समस्या का समाधान आज हम लेकर आए हैं। बरसात में होने वाले थनैला रोग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बरसात के मौसम में नमी और कीचड़ के कारण गाय भैंसों में थनैला रोग तेजी से फैलता है। इसमें थन सूज जाते हैं, दूध कम हो जाता है और दूध का रंग बदल जाता है। यह बीमारी सामान्यतः गाय, भैंस, बकरी एवं सुअर समेत लगभग सभी वैश्य पशुओं में पाई जाती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। थनैला बीमारी पशुओं में कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु, फफूंद एवं ईस्ट तथा मोल्ड के संक्रमण से होता है। इसके अलावा चोट तथा मौसमी प्रतिकूलताओं के कारण भी थनैला हो जाता है। थनैला रोग फैलने का मुख्य कारण होता है मौसम में नमी का होना। ज्यादातर समय फर्श गीला रहता है, जिसकी वजह से पशु के थनों में परजीवी प्रवेश कर जाते हैं। इसकी वजह से थनैला रोग हो सकता है। जब पशुपालक भाई दूध दुहने में अंगूठा अंदर की तरफ रखते हैं तो पशु के थनों में गांठ पड़ जाती है, जिसकी वजह से थन खुले रह जाते हैं और बारिश के दिनों में पैदा हुए परजीवी के चलते थनैला की स्थिति पैदा हो सकती है। बारिश के दौरान अगर पशु के थनों पर चोट लग जाए तो घाव नहीं भरता और थनैला की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रमुख लक्षणों में पशु के थनों में गांठ हो जाना, पशु के थन का आकार सामान्य से अधिक बड़ा हो जाना, थनों को दबाने पर दूध की जगह खून या पस निकलने की अवस्था हो जाना, पशु के थनों में दर्द रहना और थन से फटा हुआ या दूषित दूध का निकलना होता है। कुछ सावधानियां या उपचार है जिससे कि हम थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं। पशु को थनैला होने पर उसे हरा धनिया खिलाया जाना चाहिए। थनैला की स्थिति में पशु को केले के अंदर कुछ कपूर डालकर खिलाया जा सकता है। थनैला रोग होने पर सबसे पहले पशु चिकित्सक से संपर्क करें। रोग के होने पर पशु के नीचे धुआं या गर्म आंच नहीं दिखानी चाहिए। रोग के हो जाने पर पशु को किसी तरह की भी चीज बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देनी चाहिए और लक्षण दिखने पर तुरंत किसी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही कुछ बचाव हैं, कुछ सावधानियां हैं जिसके माध्यम से आप थनैला रोग से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। बरसात के दिनों में पशु के रहने के स्थान को गीला न रहने दें। थनों में चोट या गांठ पड़ने पर डॉक्टर की सहायता तुरंत लेनी चाहिए। पशु को खुरदरे और गीले फर्श पर नहीं छोड़ें। पशु को खुले में चरने के लिए या बैठने के लिए न छोड़ें। पशु के थनों की सफाई नीम के गर्म पानी से करनी चाहिए। पशुओं के बांधे जाने वाले स्थान या बैठने के स्थान व दूध दुहने के स्थान की सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूध दुहने की तकनीक सही होनी चाहिए जिससे थन को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे।

दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने जाना बरसात में गाय भैंसों का थनैला रोग, इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और ऐसे में हम अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं, इस विषय में भी श्रोताओं भी आपने सुनी कुछ आवश्यक जानकारियां कार्यक्रम खेती की बातें में।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जीवन में हम बार बार अपने कर्म का मूल्यांकन करके उसके परिणाम को मानते हैं। सफलता मिले तो हम खुश होते हैं और असफलता मिले तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें एक अद्भुत शिक्षा देती है कि फल की चिंता को त्याग कर केवल अपने कर्म में श्रद्धा और निष्ठा रखें। कल्पना कीजिए, किसान जब बीज बोता है तब उसे पता नहीं होता कि फसल कैसी होगी, फिर भी वो पूरे समर्पण से मेहनत करता है। यही सच्चा कर्मयोग है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम बिना फल की अपेक्षा किए अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगते हैं, तभी जीवन में संतुलन, शांति और सफलता अपने आप आने लगती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। परिणाम की चिंता हमें बेचैन करती है, जबकि कर्म की शुद्धता हमें भीतर से मजबूत करती है। तो आज का चिंतन यही है कि अपने कर्म को पूजा समझ कर करिए, निष्काम भाव से करें, फल अपने आप मिलेगा सही समय पर। ये था आज का चिंतन। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देशगान के साथ।

संवेद स्वरों में अभी आपने सुनाई देशकान। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। और अब आइए कार्यक्रम वंदना में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में माँ भगवती के भजन।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर। आज कार्यक्रम वंदना में हमने शामिल किए थे माँ जगदम्बा के भजन और आरती लता मंगेशकर की आवाज़ में।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 6:50 हो रहे हैं, प्रस्तुत है रामचरितमानस।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। यह शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

0: plata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन

फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 7:05 हो रहे हैं और अब आइए आपको बता दें आज यानी 11 जुलाई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियाँ। श्रोताओं, आज का ये जो दिन है 11 जुलाई, ये पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अत्यधिक तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही आज का ये दिन मनाया जाता है। ये जागरूकता मानव समाज की नई पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने का एक संदेश देती है। बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भविष्य में देने के लिए छोटे परिवार की महती आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन कर मानव समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने और हर इंसान के भीतर इंसानियत को बरकरार रखने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस की महत्ता को समझा जाए। और आपको बता दें आज ही के दिन सन 1956 में अंग्रेजी भाषा के मशहूर साहित्यकार अमिताभ घोष का जन्म हुआ था। उनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइंस के लिए उन्हें सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही आज के दिन ही सन 1902 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और प्रथम रक्षा मंत्री रहे सरदार बलदेव सिंह का भी जन्म हुआ था। और श्रोताओं, आज के दिन ही सन 2003 में भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक इन्हें माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे। वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को भी आंखों से कभी ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उनके लेखन के लिए तो स्मरण उन्हें किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए भी उन्हें चिरस्मरणीय किया जाता है। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की थी, जिनमें से एक उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे। सन 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से उन्हें विभूषित किया गया था। और श्रोताओं, आज के दिन ही परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का भी निधन हुआ था सन 2011 में।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज के इतिहास यानी 11 जुलाई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियाँ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओ, हम आपको बता दें, आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हमने शामिल किए हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शारदा सिन्हा। 7:35 का वक्त होगा बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि का, और आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं आधुनिक गान। कलाकार हैं धनंजय भट्टाचार्य। स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम होगा अपने दैनिक समय पर सुबह 7:50 पर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिला बंध्याकरण और इसके स्थायी उपायों के बारे में। इस विषय पर हमें जानकारी देंगी डॉक्टर निशा यादव, और इनसे बातचीत करेंगे राजेश कुमार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम, जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।
3: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए, आज के इस अंक में हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। श्रोताओं, 11 जुलाई का जो दिन है वो विश्व जनसंख्या दिवस को समर्पित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है जनसंख्या के मुकाबले में प्रथम स्थान पर आता है, और ऐसे में हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, हमारे जमशेदपुर की जनता क्या सोचती है, इस विषय पर हमने अपने शहर के लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित यह कार्यक्रम। कार्यक्रम के शुरुआत में हमारे साथ हैं बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेविका राखी श्रीवास्तव।
4: सर्वप्रथम सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं राखी श्रीवास्तव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा से। आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। किसी ने क्या खूब लिखा है, बाढ़ पानी की हो या जनसंख्या की, तबाही मचा ही देती है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन से हुई थी, और इसका मूल उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जनसंख्या वृद्धि आज एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है। इस समस्या के समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग भी निरंतर प्रयत्नशील है और नित नए नए तरीकों से जागरूकता तथा रोकथाम का कार्य करती है। 2026 का थीम है, जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल। आज हम सभी जानते हैं कि साक्षरता दर पूर्व की भांति बढ़ चुकी है। ऐसे में महंगाई वृद्धि, सीमित संसाधनों, मातृ शिशु स्वास्थ्य समस्या एवं लैंगिक समानता जैसी महत्वपूर्ण व्यवहारिक महत्ता को स्पष्ट देखा और समझा जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कर हम इन सभी विषयों पर गुणवत्तापूर्ण कौशलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि हम सभी ऐसे में मिलकर भारत जैसे गौरवशाली देश के साथ साथ पूरे विश्व को एक नया आयाम देने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।
3: अभी हमारे साथ एक गृहिणी हैं जिनका नाम भारती सिन्हा है। आइए सुनते हैं उनके विचार।
5: नमस्कार, आज 11 जुलाई है, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। दोस्तों, जनसंख्या कोई संख्या नहीं है, ये हमारे देश की ताकत है। लेकिन जब यह ताकत बिना योजना के बढ़ जाती है तो यह बोझ बन जाती है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारे पास मेहनत, जुनून और सपने हैं, लेकिन साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, रोजगार और आवास की चुनौती भी है। इस दिवस का संदेश सिर्फ 3 बातों का है। पहला, छोटा परिवार सुखी परिवार। 2 बच्चे, अच्छी परवरिश, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे, और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और मौका मिलेगा। दूसरा, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं। बेटी पढ़ेगी तो परिवार रोशन होंगे, वो भी दो परिवार। बेटी को भी बराबर का अधिकार और सपने देने हैं। तीसरा, योजना से ही विकास। जब हर परिवार अपनी आय और खर्च के हिसाब से फैसला लेगा, तभी गांव से शहर तक का विकास संभव है। सरकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है परिवार नियोजन अपनाना, जागरूकता फैलाना और हर बच्चे को सम्मान देना। याद रखिए।

0: थे हमारे देश के फ्यूचर की बात। आज भारत की आबादी में हमारी यंग जनरेशन सबसे बड़ा हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इसके साथ उतने ही बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। ज़रा सोचिए, जब आबादी तेज़ी से बढ़ रही है तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी तो दबाव बढ़ रहा है। आज कई शहरों में गर्मियों में पानी की भारी किल्लत होना या हवा का प्रदूषित होना इसका सीधा एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम सब अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आबादी ज़्यादा होने की वजह से कॉलेज सीट्स और नौकरियों के लिए कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं है, क्वालिटी की भी है। सिर्फ नंबर्स बढ़ना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये है कि क्या हर बच्चे को, चाहे अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, अच्छी एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर मिल पा रहा है। जब तक देश के हर नागरिक को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, तब तक हम एक बेहतर समाज नहीं बन सकते। ये दिन हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमें सिर्फ एक भीड़ भाड़ वाला देश नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और सस्टेनेबल देश चाहिए। अगर हम आज से ही सही एजुकेशन, जेंडर क्वालिटी और पानी बिजली बचाने जैसी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें, तो हम इस भारी आबादी को अपनी कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
1: प्रोफेसर अरविंद पंडित ने विश्व जनसंख्या दिवस पर अपने शब्दों में कहा,
2: तो ये बढ़ती जनसंख्या न सिर्फ रोजगार रोजी रोटी के लिए एक समस्या है, बल्कि इसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई है, जैसे मातृका स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, जो कि धीरे धीरे करके समाज में पनप रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित। तो यदि हम मुख्य रूप से देखें तो ये जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण देखा जाता है कि चिकित्सा सेवा में सुधार। पहले की अपेक्षा आज से 50 वर्ष पहले चिकित्सा की उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। लोग हैजा होता था, कोलरा होता था, टाइफाइड होता था, बहुत सारे आदमी मर जाते थे स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में। लेकिन अभी की तिथि में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है, तो लोगों का जीवन आयु भी बढ़ा है, इसके चलते भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है, ये दोनों ही जो है कम पहले की अपेक्षा अनुपात में कई कमी आई है। शिक्षा का अभाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कहता है कि जहाँ न जाए आकाश, जहाँ भी अंधकार है वहाँ इसका मतलब है कि कोई तरह का प्रकाश नहीं है। तो बस उसी तरह जिस समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, वहाँ पर जो है लोग पुराने तरीके, खास करके पुराने कई रूढ़िवादी तरीकों को अपनाते हैं, और लोग को ये मानना है कि जिस घर में जितना ज़्यादा सदस्य होंगे वहाँ पर जो है उतनी ज़्यादा आमदनी होगी और उतना हम सुखी संपन्न होंगे, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। जितने भी खास करके कहिए कि विकसित देश हैं, वहाँ पर कम जनसंख्या रहते हुए भी वो काफ़ी डेवलप किए हैं। तो ये इस पर विचार करने की ज़रूरत है, सिर्फ हम जनसंख्या बढ़ाने पर ही नहीं रहें।
1: काउंसिलर प्रिया कुमारी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा,
3: राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, जिसकी तिथि 11 जुलाई हर वर्ष मनाई जाती है। 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो भारत में भी इस दिन जनसंख्या, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सतत विकास से जुड़े मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौती और उनके समाधान के प्रति हम समाज को कैसे जागरूक कर सकते हैं, इस पर काम किया जाता है। कई कई जगहों पर तो नुक्कड़ नाटक से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी, और जनसंख्या बढ़ने से किसी एक एरिया या सेक्टर पर प्रभाव नहीं आता। इसका प्रभाव हमारे रोजगार पर आता है, हमारे शिक्षा पर आता है, हमारे स्वास्थ्य पर आता है, हमारे आवास पर आता है, हमारे प्रकृति पर आता है। तो इन सारे चीज़ों को या इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए या इसकी रोकथाम करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 11 जुलाई को हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं, और

0: मुझे एक छोटी सी थीम भी याद है जो 2025 की है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनें जो होंगी वो सीमित होते चलेगी, और जहाँ सीमितता होगी वहाँ समस्याएं बढ़ते चली जाएंगी। मेरा एक संदेश है छोटा सा, क्यों ना हम परिवार नियोजन की नीति को अपनाएं और अपने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हुए रोजगार की श्रेणी में आएं। धन्यवाद।
1: वरिष्ठ शिक्षिका निशा जी ने अपने शब्दों में कहा,
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बढ़ती जनसंख्या, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और संसाधनों के सही उपयोग के प्रति जागरूक करना है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन, पानी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर दबाव पड़ता है। यदि जनसंख्या नियंत्रित रहे तो देश का विकास अधिक तेजी से हो सकता है और हर व्यक्ति को बेहतर जीवन मिल सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझें और अपने परिवार तथा समाज में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। शिक्षित और स्वस्थ समाज ही एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की पहचान है। आइए इस राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम जागरूक नागरिक बनेंगे और एक स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: प्रतिभा रानी मिश्रा के शब्दों में विश्व जनसंख्या दिवस के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं इनके विचार।
3: भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भोजन, पानी और प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं और गंभीर हो सकते। इन चुनौतियों का समाधान केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि हम सभी की जागरूकता और जिम्मेदारी से संभव है। छोटे परिवार को अपनाना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं का सही उपयोग करना और परिवार नियोजन के प्रति सकारात्मक सोच रखना समय की आवश्यकता है। आइए इस राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम जनसंख्या संतुलन, शिक्षा और जागरूकता का संदेश अपने परिवार और समाज तक पहुंचाएंगे तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान करेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप विश्व जनसंख्या दिवस पर लोगों के विचार सुन रहे थे। अब इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से अनिमेश को दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विवेक आदित्य। नमस्कार, जोहार।
4: जरा सुनिए,
5: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए।
5: समस्या है तो समाधान भी, जहां चाह वहां राह, बात बन जाएगी।
4: जरा सुनिए।

कार्यक्रम जरा सुनिए श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम, और लोकगीतों के कार्यक्रम में आज हमने शामिल किए हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शारदा सन्हा।

लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थी शारदा सिन्हा। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। और आज कार्यक्रम सुरांजलि में हमने शामिल किए हैं आधुनिक गान। कलाकार हैं धनंजय भट्टाचार्य।

बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं भी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे आधुनिक गान, कलाकार थे धनंजय भट्टाचार्य। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में चर्चा का विषय है महिला बंध्याकरण और इसके स्थायी उपायों के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर निशा यादव और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, परिवार को सीमित रखने के लिए एक स्थायी उपाय के रूप में महिला बंध्याकरण को अपनाया जाता है। महिला बंध्याकरण है क्या और इसे कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हमें बता रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा यादव। हमें ये बताइए कि महिला बंध्याकरण होता कैसे है।
1: महिला बंध्याकरण यानी कि परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, जो महिलाएं और आगे बच्चा नहीं चाहती हैं, जिनकी फैमिली कम्प्लीट है, वो महिला बंध्याकरण करा सकती हैं। इसमें होता ये है कि एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, इसको दो तरीके से किया जाता है, एक तो लैप्रोस्कोपी द्वारा और दूसरा मिनी लैप। तो मिनी लैप में है कि एक छोटा सा चीरा दिया जाता है पेट के निचले भाग में, और उसके थ्रू बस एक उंगली घुसने भर चीरा दिया जाता है, और बच्चेदानी के दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब होता है, दो ट्यूब्स होते हैं, उसी के थ्रू जो अंडाशय से अंडा निकलता है वो ट्यूब के थ्रू क्रॉस करके बच्चेदानी में आता है, तभी बच्चा ठहरता है। इस ट्यूब को पकड़ के उसको काट के और फिर से सिलाई कर दी जाती है दोनों ट्यूब्स को। तो ये हो गया बंध्याकरण, मतलब ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन है। इसके बाद अगर और वो बच्चा चाहेंगी तो वो नहीं हो सकता।
0: इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है शरीर पर?
1: नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं है, अगर सही डॉक्टर से वो ऑपरेशन कराती हैं तो इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन वो ओटी टेबल से उठ के चल के घर चली जा सकती हैं। नहीं, इसमें भर्ती होने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें बहुत बेड रेस्ट चाहिए, भारी चीज़ नहीं उठा सकती हैं, ये सब। जब जहाँ एक उंगली भर चीरा दिया जाएगा, एक उंगली की चौड़ाई भर, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और लोग कहते हैं कि महीना दो महीना उसको आराम करना पड़ेगा, ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के, ये सब गलत धारणा है कि ऑपरेशन के बाद कमर में दर्द पकड़ लेगा, पेट में दर्द पकड़ लेगा, महिला मोटी होने लगेगी, ये सब सारा कोई साइड इफेक्ट्स उसमें नहीं होता।
0: अगर ऑपरेशन के बाद किसी कारणवश यदि उस महिला को फिर से गर्भ चाहती हो, फिर से बच्चा जनना चाहती हो, तो क्या कुछ उपाय ऐसा हो सकता है?
1: हाँ, उसके लिए उपाय है, फिर से ऑपरेशन करके उस ट्यूब को खोला जा सकता है, लेकिन सक्सेस रेट कम होता है। जैसे अगर 100 महिलाओं का ट्यूब खोला जाए तो 30-40% को ही प्रेगनेंसी होने का चांस रहेगा। इसीलिए जब वो बिल्कुल श्योर हो जाए कि अब और बच्चे नहीं चाहिए, मेरी फैमिली कंप्लीट है, तभी बंध्याकरण कराएं।
0: और अंत में हमारी महिला श्रोताओं को परिवार नियोजन के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: परिवार नियोजन तो हर एक महिला के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के जमाने में जहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, वहाँ 1 से 2 बच्चे ही एक परिवार के लिए काफ़ी है, और इसीलिए हर एक महिला को या पुरुष को परिवार नियोजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से सही सलाह लेनी चाहिए। एक नहीं, कई परिवार नियोजन की ऑप्शंस हैं, तरीके हैं, और उनमें से कोई भी जो सूट करे उस कपल को, उसको चुनना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि परिवार नियोजन करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उम्मीद है हमारे जो श्रोता हैं आपके द्वारा बताई गई बातों पर पूरी तरह से अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत श्रोताओं भी अब सुन रहे थे महिला बंध्याकरण और इसके स्थायी उपायों के बारे में जानकारी दे रही थी डॉक्टर निशा यादव और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: जलवायु, उपभोग और उत्पादन, यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी, खासकर अमीर देशों में, तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति, विशेषकर संपन्न लोग, कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है।
5: FM के 102.4 MHz पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: दिल्ली से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे।

0: स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
1: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरी है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गणमन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द दिखेंगे सार्थक परिणाम। धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत सभी 30 आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। ईसीएलजीएच योजना के तहत वितरित किए गए ऋण स्वीकृति पत्र। जापान

0: होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे संभालेंगी टीम का कमान, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और झारखंड रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम केंद्र ने 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित झारखंड सरकार के 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जल्द ही सार्थक परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई है। नई दिल्ली में आयोजित इस समापन समारोह और सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न देशों के राजनयिक, केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय परामर्श से राज्य में निवेश और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। धनबाद में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मरावी और सह प्रभारी शकील अहमद खान शामिल हुए। बूथ लेवल एजेंटों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और सत्यापन में आ रही चुनौतियों को रखा। भूपेंद्र मरावी ने कहा कि पार्टी हर पात्र मतदाता का नाम जोड़ने और उनका अधिकार सुरक्षित रखने पर नजर बनाए हुए है।
1: AICC द्वारा जो सह प्रभारी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, वो आज धनबाद लोकसभा तो ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्या क्या जिनकी कमेटी है, पूरी है अधूरी है, उस पर पूरा विचार विमर्श हो रहा है। वैसायर पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जो आम जनता का सहयोग कर रहे हैं, उस पर समीक्षा कर रहे हैं।
0: धनबाद की विशेष MP MLA अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि यह मामला वर्ष 2011 में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है।
2: BCCF के क्वार्टर को अतिक्रमण खाली कराने में वहाँ के स्थानीय समुदाय के लोग, प्रशासन के ऊपर गोली और बम से हमला भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के हमले में 4 लोग मर गए। इसमें तत्कालीन SP जख्मी हो गए और भी पदाधिकारियों को चोट लगी। कुल 30 आरोपियों को इसमें दोषी पाया गया, जिसमें 302 और 307 में उन लोगों को बरी कर दिया गया।
0: हजारीबाग परिसदन में झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें लंबित विधानसभा प्रश्नों और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति के सभापति और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने बैठक की कमान संभाली। सभापति ने जनहित योजनाओं की पारदर्शिता के साथ साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में खूंटी के विधायक रामसूर्य मुंडा समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। वे देवराहा बाबा के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और समाज की सुख शांति की कामना की। उन्होंने भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित बृहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रांची की डॉक्टर मेघा रानी ने मात्र 120 मिनट में 120 पन्ने लिखकर हिंदी लेखन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस अनूठी उपलब्धि को आधिकारिक मान्यता दे दी है। इस सफलता के साथ ही वे दुनिया की सबसे तेज हिंदी लिखने वाली महिला बन गई हैं। डॉक्टर मेघा पिछले 7 वर्षों से नारी विमर्श और सामाजिक विषयों पर लगातार लिख रही हैं। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्योगों के लिए आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के तहत ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इसी वर्ष 8 मई से प्रभावी यह योजना MSME और विमानन क्षेत्र को कार्यशील पूंजी सहायक प्रदान करती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद में पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में SSP प्रभात कुमार ने दावा किया कि जिले में अपराध के मामलों में करीब 30% की कमी

0: आई है। जून माह में 409 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 460 पुराने लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। एसएसपी ने बताया कि लगातार प्रयासों से पहली बार लंबित मामलों की संख्या घटकर 1800 से नीचे पहुंच गई है।
1: समीक्षा बैठक की गई है और जिसके फलस्वरूप हमारा जो पेंडेंसी है वो आज के डेट में 1794 से नीचे आ गया है। सिमिलरली हम लोग इस माह अभी जो एक सप्ताह के लिए एक मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है, वो निर्देश है कि जितने भी अपराधियों को कुर्की जब्ती करने के बाद फिरारी दिखा करके चार्जशीट किया गया था, वो सभी अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है जो एक सप्ताह चलेगा।
0: हजारीबाग में पुलिस ने जब्त किए 1452 किलोग्राम डोडा, 307 किलोग्राम गांजा और 5 लीटर कफ सिरप को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह कार्यवाही बरही चौपारण चरही और कटमदाग थाने में लंबे समय से रखे नशीले पदार्थों पर की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। सभी नशीले पदार्थों को लोहरदगा के बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट ले जाकर सरकारी मानकों के अनुसार नष्ट किया गया। गिरिडीह जिला प्रशासन ने सरिया थाना क्षेत्र के जंगलों में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 123 पीस जिलेटिन, एक जेसीबी मशीन और कई ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इस संयुक्त छापेमारी अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता और एसडीपीओ धनंजय राम शामिल थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।
2: बहुत दिनों से जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि इलीगल माइनिंग जो है सरिया क्षेत्र में किया जा रहा है, आज उसी पर जो है टीम बना करके संयुक्त रूप से जो है छापेमारी की गई। उस छापेमारी में जो है सो मशीनें वगैरह जब्त हुए हों, लोगों के लोग हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही।
0: रांची रेल मंडल से गुजरने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें आज आंशिक रूप से रद्द और शॉर्ट टर्मिनल रहेंगे। वर्धमान हटिया मेमू आज गोमो तक ही चलेगी, जबकि खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस आद्रा और आसनसोल रांची पैसेंजर मूड़ी स्टेशन तक ही जाएगी। हटिया और सांकी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के सभी फेरे आज पूरी तरह से रद्द रहेंगे। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल रात से जारी रुक रुक कर बारिश के बीच मौसम केंद्र ने आज हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह जारी की है। झारखंड की 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में हुआ है। सिमडेगा की सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी संभालेंगी। टीम में ओलंपियन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन को भी स्थान मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चारों खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने मटकुरिया गोलीकांड में 15 साल बाद फैसला आने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पूर्व मंत्री मन्नान समेत 28 को 3-3 साल की कैद, मुचलका नहीं भरने पर मन्नान रांची में गिरफ्तार। प्रभात की सुर्खी है, 2 अपराधी होटल पार्क रिट्रीट में ठहरे, रात में 80 लाख की जगुआर से चोरी करने पहुंचे। हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, टीजीटी 21 वालों को भी दें वरीयता का लाभ। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सरकारी गाड़ी छोड़ अपनी कार पर बैठे वित्त मंत्री, चर्चाओं का बाजार रहा गर्म। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द दिखेंगे सार्थक परिणाम। धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत सभी 30 आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। ECLGS योजना के तहत वितरित किए गए ऋण स्वीकृति पत्र। जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे संभालेंगी टीम की कमान, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी।

मौसम केंद्र ने 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं से का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के आज के सफर में आपके साथ है आपके रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार श्रोताओं, और श्रोताओं रिमझिम गिरती बारिश की बूंदें, तपती गर्मी से राहत और मिट्टी की सूंधी खुशबू, मॉनसून का आगमन हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। खासकर बच्चों के लिए तो ये मौसम किसी उत्सव से कम नहीं होता। कागज की नाव बनाना, बारिश में भीगना और छपाक छपाक करके कूदना उनका मन पसंदीदा शगल बन जाता है। लेकिन इस सुहावने मौसम के साथ ही श्रोताओं स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। श्रोताओं मॉनसून अपने साथ सिर्फ खुशहाली नहीं बल्कि हवा और पानी में पनपने वाले बैक्टीरियाज, वायरसेस और मच्छरों की फौज भी लेकर आता है। इसलिए इस मौसम में लापरवाही बरतने से बच्चे सबसे जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी एक छोटी सी लापरवाही जैसे सड़कों या गलियों में कचरा फेंकना जल भराव और गंभीर संकट का कारण बन सकती है। इसलिए श्रोताओं ये हमें विस्तार से समझना होगा कि इस मॉनसून में हम अपने बच्चों को तो सुरक्षित रख ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण को भी हमें कैसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना है, ये हमारे लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए बहुत जरूरी है।

जरूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे तभी तो पर्यावरण भी हमें सुरक्षित रखेगा, है ना। खैर और बातें करेंगे, लेकिन आइए कार्यक्रम फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ।

फिल्म जैकपॉट का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। बोल लिखे हैं तुराज और अजीम शिराजी ने और धुन बनाई है शरीब और दोषी ने। श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और श्रोताओं, बारिश के दिनों में तो जगह जगह पानी जमा होना बिल्कुल लाजमी है और कीचड़ होना आम बात है। बच्चे अक्सर खेलते समय इन बातों पर ध्यान नहीं देते और सीधे तौर पर कहें कि दूषित पानी या कीचड़ के संपर्क में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है श्रोताओं, कि जो खतरनाक जीवाणु संक्रमण है, जो खास करके जानवरों से या दूषित हुए पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से फैलते हैं। अगर बच्चे पैर में कोई छोटा सा घाव या खरोंच ले आए तो वो कीचड़ में खेलते वक्त तो ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें खास ख्याल रखना है कि बच्चे जब बाहर जाएं तो कोशिश करें कि ओडोमॉस लगाकर भेजें, और जब वो वापस आए तो अच्छे से उनके हाथ पैर को आप हो सके तो हल्के गर्म पानी में धुल दें, ताकि जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस बाहर खेलने से उनके संपर्क में आए हों वो निकल जाएं। इसके साथ ही श्रोताओं, गंदे पानी और कीचड़ में लंबे समय तक रहने से बच्चों को फंगल इन्फेक्शन या दांत, खुजली और पैरों में एथलीट फूट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि बारिश के दिनों में बच्चे अभी पार्क में या गार्डन में जाके ना खेलें, अपने घरों के आसपास ही या छत पर जाके खेल सकते हैं। और जमे हुए पानी से श्रोताओं, ये तो हमें पता ही है कि मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर भी जन्म लेते हैं। तो शाम के समय या जल भराव वाले इलाकों में बच्चों को खेलने से हमें इस समय, अभी मानसून के समय, मना करना ही सावधानी के तरफ हमारा कदम होगा। और श्रोताओं, बच्चों को ये सख्त हिदायत दें कि वे ऐसे रास्ते या पार्कों में ना जाएं जहां घुटनों तक या टखनों तक पानी जमा हो। जल जमाव वाले स्थानों में खुले मेन हॉल या बिजली के गिरे हुए तार होने का भी भारी खतरा रहता है। और सिर्फ बाहरी सुरक्षा ही श्रोताओं काफ़ी नहीं है, मानसून में बच्चों के खान पान पर भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। इस मानसून में पाचन क्रिया जो है वो थोड़ी धीमी हो जाती है और पानी और भोजन के दूषित होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो श्रोताओं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पर हम अच्छे से ध्यान दें तो बच्चों को बीमार होने से या बीमारी के चपेट में आने से हम रोक सकते हैं। और अब आइए फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गाना सुनते हैं, ऐश किंग और साथियों की आवाज़ों में।

फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज़ों में। अराफत महमूद के ये बोल हैं और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने। तो श्रोताओं, मानसून ने दस्तक दे दी है, तो आप भी मानसून का मजा लीजिए। लेकिन मानसून की कुछ समस्याएं भी हैं जो हम खुद पैदा करते हैं, और वो है कचरे का गलत प्रबंधन। सड़कों पर या खाली प्लॉटों या नालियों के आसपास फेंका गया कचरा इस मौसम में एक बड़े संकट का रूप ले लेता है। श्रोताओं, जब हम प्लास्टिक की थैलियां, खाली बोतलें, रैपर्स या घर का गीला कचरा खुले में फेंक देते हैं, तो बारिश के पानी के तेज बहाव के साथ ये सारा कचरा बहकर नालियों और सीवरों में चला जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इससे हम और आप बिल्कुल वाकिफ हैं। तो कोशिश करें श्रोताओं कि अभी कचड़ों को कचड़ों के डस्टबिन में या बिन में ही डालें, और हो सके तो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। श्रोताओं, प्लास्टिक जो है वो गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी गलते नहीं हैं, और ये नालियों के मुहाने को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि बारिश का पानी सड़कों पर पूरी तरह से बहता है और कई बार लोगों के घरों के भीतर भी घुस जाता है। जाम नालियों में फंसा जैविक कचरा सड़ने लगता है, जिससे पूरा इलाका जो है वो असहनीय बदबू में फैल जाता है और हवा प्रदूषित होती है। तो श्रोताओं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम अपने साथ साथ अपने आसपास और अपने देश को भी साफ सुथरा और स्वच्छ रख सकते हैं। इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का

0: प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ेगा। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुआ युद्धविराम समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मोरिना ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हो रहे हैं श्रोताओं। कार्यक्रम सुरंजना आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुरंजना में आप सभी का स्वागत है। और आज कार्यक्रम सुरंजना में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, जिसे लिखा है कातिल शफ़ई ने, क्योंकि आज है इनकी पुण्यतिथि। श्रोताओं, जब जब उर्दू शायरी

और उपमहाद्वीप के सिनेमाई संगीत का इतिहास लिखा जाएगा। एक नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा सबसे ऊपर चमकेगा और वो हैं कतील शफ़ई। आज के दिन ही 11 जुलाई सन 2001 को लफ्ज़ों के ये मुसाफिर ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म औजार का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू, उदित नारायण और चंदना दीक्षित ने, और इस गीत को लिखा है कतील शफ़ई ने।

कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म औजार का ये गाना। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। इस समय सुबह के 9:10 होने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भेंट वार्ता प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ और आज इस कार्यक्रम में भेंट वार्ताकार हैं आशीष अग्रवाल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां भी उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेज वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
2: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
3: बिल्कुल,
2: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
3: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, है किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर
2: जी,
3: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से
2: जी। तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा

0: होती है, हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल है वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहाँ पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए, अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घरों में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है, लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न हैं उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने के ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट, जहाँ पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलिट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और

0: मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहाँ पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
0: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं, तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमीडिएटली। अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है, तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है। और फिर नीड है कि वांट

0: फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जी, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है, जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहाँ जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम, तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है, तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा,
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ, तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशन इंप्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है, तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो, ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता है जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहाँ जहाँ अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल, तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस,
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है, तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की, तो उसका बहुत बड़ा एमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स, 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहाँ अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं, तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने, कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की, लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो एमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनी इस पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी XYZ का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस

0: तो ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं, माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहाँ 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भेंट वार्ता प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसका प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, और शास्त्रीय संगीत के आज के अंक में हमने शामिल किए हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं अली अहमद हुसैन और साथी राग तोड़ी में।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे शहनाई वादन रागतोड़ी में, कलाकार थे अली अहमद हुसैन और साथ ही इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है समाचार, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुए युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिन में आज राजधानी दिल्ली में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a five-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared commitment to a free, open and prosperous region. They also emphasized the importance of safeguarding sovereignty, territorial integrity and the rules-based international order. The two leaders welcomed the conclusion and signature of a balanced, comprehensive and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement, FTA. They agreed to work together to ensure its early entry into force and effective implementation. Earlier, speaking during delegation-level talks,

भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हुई। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 9 बजे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। वार्ता के दौरान अगले 4 वर्ष के लिए सहयोग रणनीति हिंद

0: चांद क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा और भारतीय नौसेना तथा न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और उसके विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऑकलैंड में इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट 2026 कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता केवल 9 महीने में पूरा होना दोनों देशों के मजबूत विश्वास का प्रमाण है।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्ष में भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध ईरान के नए नेता मुर्तबा खामेनेई के एक प्रमुख वित्तीय सहयोगी सहित 13 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर लगाए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार दुबई स्थित ईरानी बैंकर और कारोबारी अली अंसारी पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का आरोप है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 3 एक्सचेंज हाउस और कई कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य ईरान के शीर्ष नेतृत्व की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुआ युद्धविराम समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता

0: अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से लागुएरा प्रांत में भारी तबाही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए लगभग 30 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता की अपील की है। नाइजीरिया में सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 2 महीने पहले अगवा किए गए शिक्षकों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। ये कार्रवाई दक्षिण पश्चिमी ओयो राज्य में की गई। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अभियान के दौरान 8 संदिग्ध अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जबकि कई अन्य मारे गए। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हुई। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने देश के लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो,

0: फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के आज के सफर में श्रोताओं आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार। और श्रोताओं, आज का दिन कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज है 11 जुलाई, यानी विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एक ऐसा दिन श्रोताओं जो हमें जश्न मनाने का नहीं बल्कि रुक कर सोचने के लिए मजबूर करता है। सोचने के लिए कि इस तैरती हुई नीली गेंद पर, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, अपनी धरा कहते हैं, हम इंसानों का बोझ इस पर कितना बढ़ गया है। श्रोताओं, जब 1987 में दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा छुआ था, तब संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की थी। आज ये आंकड़ा लगभग 8 अरब पार कर चुका है और तेजी से 9 अरब की तरफ बढ़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम कितने हैं, सवाल ये है कि जितने हम हैं, क्या हमारे पास उन सभी के लिए खुली हवा, साफ पानी, 2 वक्त की रोटी और एक सुकून भरी जिंदगी है या नहीं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम फिल्म संगीत में और इस संगीत भरे सफर में हम मंथन करेंगे इस बात पर और उस अदृश्य दबाव पर भी बात करेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे जंगलों, हमारे परिवारों, हमारे जानवरों, हमारे पशुओं और हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। कार्यक्रम फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना कैलाश खेर की आवाज़ में, बोल लिखे हैं अशोक मिश्रा ने और धुन बनाई है शांतनु मोइत्रा ने। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर। जब भी जनसंख्या की बात होती है तो राजनेता और अर्थशास्त्री अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश की बात करते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा डरावना है। संसाधन सीमित है और मांग अनंत है। आइए इसे एक साधारण गणित से समझते हैं। एक देश की GDP श्रोताओं चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अगर उसे बांटने वाले हाथ उससे दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो प्रति व्यक्ति हिस्से में सिर्फ तंगी ही आएगी। आज बेरोजगारी का जो आलम है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हर एक नौकरी के लिए हजारों युवा लाइन में खड़े हैं। प्रतियोगिता इतनी क्रूर हो चुकी है कि काबिलियत होने के बावजूद लाखों नौजवान हाशिए पर चले जाते हैं और इसका सीधा असर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। हमारे अस्पताल, हमारी ट्रेनें, हमारी सड़कें सब इस भारी आबादी के नीचे करा रही हैं। सरकारें स्कूल बनाती हैं लेकिन बच्चे उससे ज्यादा हो रहे हैं। सरकारें अस्पताल खोलती हैं लेकिन बेड कम पड़ जाते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें संसाधन हमेशा पीछे रह रहे हैं और आबादी जीत रही है। आर्थिक असमानता की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है श्रोताओं की ये अब क्लासेस में बट रहा है। गरीब लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जब इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए होती है तो सबसे पहले हम क्या छीनते हैं? प्रकृति से ज़मीन। श्रोताओं, ये हम और आप सभी जानते हैं कि आज कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और हमारे हरे भरे जंगल सिमटते जा रहे हैं। आलम ये है कि आज शायद कल हमें ऑक्सीजन ना मिले, तो भविष्य में क्या होना है ये अगर हम जानते हैं तो आज अपना वर्तमान हमें सुधारना होगा। जनसंख्या नियंत्रण अब सिर्फ एक बात नहीं रह गई है बल्कि ये अब जरूरत बन गई है।

जुनैद अख्तर और देवाशीष दासगुप्ता की आवाज़ों में फिल्म सड़क का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, जंगलों की जो कटाई है उसका सीधा असर पड़ता है हमारे पर्यावरण और प्रदूषण पर। आज दिल्ली, बॉम्बे, बीजिंग या न्यूयॉर्क, दुनिया का कोई भी बड़ा शहर अगर हम देखते हैं तो उनकी हवाओं में अब जहर मिल रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े डराने वाले हैं। जितनी ज़्यादा आबादी, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और उतना ही ज़्यादा कचरा। और कचरे की बात से याद आया, क्या कभी हमने सोचा है कि 8 अरब लोग रोजाना कितना प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट पैदा करते हैं। हमारे शहरों के बाहर कचरे के पहाड़ हो गए हैं। नदियाँ जिन्हें हम माँ कहते हैं आज नाले में तब्दील हो चुकी हैं। समुद्र का पानी प्लास्टिक से भर चुका है जिससे समुद्री जीव मर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अब कोई किताबी बातें नहीं रह गई। बेमौसम बारिश, भीषण गर्मी और भयानक बाढ़ इसके जीते जागते सबूत हैं। श्रोताओं, ये सब जो अभी वर्तमान में हमारी धरती या हमारे साथ हो रहा है, इससे ज़्यादा भविष्य में ना हो, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद पर्यावरण दे सकें, इसकी कोशिश हम सबको मिलके करनी होगी या फिर कहें कि अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रही हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम बातें कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर। श्रोताओं भाई देश और दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं, बात करते हैं आपके और हमारे घर की। बढ़ती आबादी का सबसे सीधा और तीखा हमला होता है एक आम परिवार की जेब पर। आज के दौर में एक बच्चे को पालना, उसे शिक्षा देना या कहें अच्छी शिक्षा देना और उसकी सेहत का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं। एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार की कल्पना अगर करें तो घर में कमाने वाले एक या दो जन और खाने वाले 6 से 7। राशन की कीमतें आसमान छू रही हैं, दूध सब्जी तेल सब कुछ महंगा होता जा रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस आज एक आम आदमी की सैलरी का आधा हिस्सा रहती है। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल का खर्च पूरे परिवार को कर्ज में धकेल देता है। संसाधनों की कमी के कारण माता पिता चाहकर भी अपने सभी

बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पाते जिसके वे हकदार हैं। अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें और एक पोषण युक्त डाइट, ये सब एक सपना बनकर रह जाते हैं। एक बड़ा परिवार होने का मतलब आज के समय में सीधे तौर पर आर्थिक तंगी को दावत देना है, और जब आर्थिक तंगी आती है तो सबसे पहले होता है हमें मेंटल प्रेशर। एक आम इंसान जो दिन रात मेहनत करता है, जब महीने के आखिर में अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, तब उनका आत्मसम्मान टूट जाता है। घर के बड़ों पर यह दबाव होता है कि कल का खर्च कैसे निकलेगा, और सिर्फ बड़ों पर ही नहीं बच्चों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। तो श्रोताओं, हमारी छोटी सी कोशिश और हमारी शिक्षा हमारे आने वाले भविष्य को बदल सकती है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म काला पत्थर का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इन घने अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण है और वो किरण है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। श्रोताओं, आज जनसंख्या नियंत्रण को सीधा अगर हम माने तो महिलाओं की आज़ादी और उनके फैसलों से भी है। जब महिलाओं को करियर बनाने और अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर मिलेंगे तो वे परिवार नियोजन के महत्व को समझेंगी। खेल के मैदान से निकलकर कॉरपोरेट जगत तक जहां भी महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने साबित किया है कि वे कमज़ोर नहीं हैं। जब हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो हम पूरे परिवार को जागरूक करते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर श्रोताओं, हमें ये समझना होगा कि धरती माँ के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। आबादी का बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए हमें आज सबको खुद से एक वादा करना है, वादा इस प्रकृति से, अपने देश से, कि हम अपने संसाधनों का सम्मान करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे और एक ऐसे समाज को बनाएंगे जहां हर बच्चे को मुस्कुराने का, पढ़ने का और खुलकर जीने का मौका मिले।

महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म मजदूर का ये गाना। गीतकार हैं हसन कमाल और धुन बनाई है आर डी बर्मन साहब ने। और श्रोताओं, चलते चलते बस इतना कहेंगे कि सीमित आबादी सुखी परिवार, यही है प्रगति का असली आधार। आइए मिलकर हाथ बढ़ाएं और इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं, पेड़ पौधे और इंसानों में एक नया संतुलन लाएं और आज एक समझदार शुरुआत करें। श्रोताओं, प्रकृति का ख्याल रखिए, अपने परिवार को प्यार दीजिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी जमशेदपुर का ये आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त बेका को अनुमति। नमस्कार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुने। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

नमस्कार जमशेदपुर के आज के अंक के साथ आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। आज कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त गीता। नमस्कार दोस्तों, खूबसूरत सा मौसम है, सुहाना सा मौसम है और जब इस मौसम के बीच दोस्तों जब आसमान से फुहारें गिरती हैं तो सूखी ज़मीन हरी भरी हो जाती है, सूखे पेड़ नई पत्तियां निकाल रहे होते हैं और हर तरफ नई जिंदगी नई उम्मीद जाग उठती है। ठीक उसी तरह से दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी आशाओं का सावन आता है। कभी मुश्किलें इतनी घनी हो जाती हैं कि लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इन सब से परे जब हम अपने अंदर उमंगों के बहार पैदा कर लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे अंदर से डर, हताशा और नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाती है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी एक गीत है, हमारा हर कदम, हर कोशिश, हर संघर्ष एक सुर है और जब हम हार मान लेते हैं तो हमारा गीत भी अधूरा रह जाता है, लेकिन जब हम आशा के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो सपनों के फूल खिलने लगते हैं।

आशा फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आज के दिन विशेष की अगर चर्चा करें तो आज यानी 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा से साल 1989 में की गई थी। तब से हर साल आज के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों और अवसरों पर जन जागरूकता फैलाना, पर्यावरण नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना। श्रोता, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और हमारी युवा शक्ति, हमारी विविधता और हमारी मेहनत, ये सब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब ये जनसंख्या असंतुलित हो जाती है तो संसाधन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर दबाव पड़ता है। हर साल इस दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल 2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। बता दें श्रोताओं, ये विषय युवाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है और 8.3 अरब से अधिक होती वैश्विक आबादी के बीच युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग करके एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को अपने मनचाहे परिवार बनाने का अधिकार और संसाधन मिले। इस तरह से श्रोताओं, विश्व जनसंख्या दिवस हमें याद दिलाती है कि हमारे लिए संख्या नियंत्रण के साथ साथ बल्कि इसके लिए संतुलित विकास भी होना बहुत जरूरी है। हर बच्चे को शिक्षा, हर माँ को स्वास्थ्य सुविधा और हर युवा को रोजगार, यही सच्चा जनसंख्या प्रबंधन है।

चंद्राणी मुखर्जी और साथियों की आवाज़ों में घर द्वार फिल्म का ये गाना था। अनजान के बोल थे और संगीत था चित्रगुप्त का। श्रोताओ, आज के दिन की चर्चा हम कर रहे हैं तो आज का दिन एक और रूप से खास है हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन को विश्व घोड़ा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रोताओ, घोड़े सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि मानव सभ्यता के सबसे विश्वसनीय साथी योद्धा रहे हैं और ये दिवस पहली बार साल 2025 में मनाया गया था और इसका उद्देश्य है घोड़ों के मानव जीवन में योगदान को सम्मान देना, चाहे वो खेती किसानी हो, युद्ध हो, खेल हो, चिकित्सा हो या परिवहन। देखा जाए तो घोड़े हजारों सालों से मनुष्य के विकास में साथ निभा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और पशु कल्याण संगठनों के द्वारा से शुरू किया गया ये दिन हमें याद दिलाता है कि घोड़े सिर्फ सवारी के साधन नहीं हैं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। आज के युग में मोटर गाड़ियों के बावजूद घोड़े अभी भी कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं, खासकर ग्रामीण भारत, पुलिस, सेना, खेल और पर्यटन में। हमारे देश में घोड़ों की परंपरा बहुत प्राचीन है। वैदिक काल से ही हमें घोड़े का उल्लेख मिलता है। हम सभी जानते हैं अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। महाभारत और रामायण में भी घोड़े योद्धाओं के वाहन और रथों के घोड़े वीरता के प्रतीक थे। मुगल काल में भी घुड़सवारी, घुड़दौड़ लोकप्रिय थी। मराठा साम्राज्य और राजपुताने में भी घोड़े युद्ध की रीढ़ थे। साथ ही ब्रिटिश काल में भारतीय घुड़सवार रेजिमेंट ने विश्व युद्धों में भी बहादुरी दिखाई थी। और देखा जाए तो आज भी भारतीय सेना की रेजिमेंट में घोड़े सम्मानजनक भूमिका निभाते हैं। साथ ही कृषि, परिवहन, खेल, थेरेपी, संस्कृति और त्यौहार में भी घोड़े अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज आधुनिकीकरण के इस दौर में घोड़ों की संख्या घट रही है, कई नस्लें विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में श्रोताओं, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम घोड़ों का बेहतर देखभाल के साथ पशु चिकित्सा को बढ़ावा दें और उन्हें सम्मान दें।

सिरिशा की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अमित त्रिवेदी का ये संगीत था और फिल्म का नाम था काला।

आज के दिन के इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम याद कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि बाबा कांशीराम को, जिन्हें पहाड़ी गांधी और पहाड़ों की बुलबुल के नाम से जाना जाता था। साथ ही वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी क्रांतिकारी कविताओं और गीतों के जरिए लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए प्रसिद्ध थे। बाबा कांशीराम का जन्म आज ही के दिन 11 जुलाई 1882 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता के निधन के कारण वो साल 1902 में उच्च शिक्षा और रोजगार की तलाश में लाहौर गए, जहां वे स्वतंत्रता आंदोलनों और क्रांतिकारी विचारों के संपर्क में आए। अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने आज़ादी की अलख जगाई और कई बार सत्याग्रह में भाग भी लिया और लगभग 11 साल तक जेल की सजा काटी। गढ़वाल में आयोजित एक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि से सम्मानित किया और भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने उनके मधुर और जोशीले क्रांतिकारी गीतों से प्रभावित होकर उन्हें पहाड़ों की बुलबुल कहा। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और अब बात भारत की स्वतंत्रता सेनानी और सिख नेता बलदेव सिंह की, जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1902 को जाट सिख परिवार में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1930 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए उन्होंने सिखों का

प्रतिनिधित्व किया। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश के विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच सशस्त्र बलों के विभाजन और कश्मीरी घुसपैठ को रोकने में भी अहम भूमिका निभाई। सरदार बलदेव सिंह बतौर लोकसभा सदस्य रहते हुए लोकसभा में शरणार्थियों की समस्याओं पर भी जोर शोर से बोला करते थे। आज उनकी जयंती पर भी हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

होटल मुंबई फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, मिथुन बी प्राक और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में गीत और संगीत था मिथुन का।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। श्रोताओ, आज के दिन के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। आज की तारीख में हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, वे हैं सी शंकरन नायर, भारतीय न्यायविद, वकील, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे योद्धा। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1857 को केरल के मनकारा गांव में एक प्रतिष्ठित नायर परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे मेधावी थे। उन्होंने मद्रास के कॉलेज से कला की उपाधि और कानून की डिग्री हासिल की थी। साल 1880 में उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और उनकी तर्क शक्ति, निडरता और न्यायप्रियता ने उन्हें जल्द ही प्रसिद्धि दिलाई। नायर सामाजिक कुरीतियों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने और धर्मनिरपेक्ष शासन की वकालत की। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई। इस नरसंहार पर शंकरन नायर ने खुलकर विरोध किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहसी कदम उठाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साल 1922 में उन्होंने पुस्तक गांधी एंड अनार्की लिखी, जिसमें उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड डायर को दोषी ठहराया, लेकिन डायर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। नायर अकेले मुकदमा लड़े पर हार गए, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उनकी साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं केसरी 2 फिल्म का गाना, जो सी शंकरन नायर के जीवन पर आधारित है।

केसरी टू फिल्म का ये गाना था, पद्मभूषण पंडित अजय की आवाज़ में। इरशाद कामिल ने गीत लिखा और धुन बनाई शाश्वत सचदेव ने। और अब कार्यक्रम में खेल जगत की बातें। हम आज भारतीय खेल इतिहास के एक सुनहरे पन्ने की बात कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सोवा बाजार क्लब की, वो क्लब जिसने आज ही के दिन भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की नींव रखी थी। साल 1889 में कलकत्ता के सोवा बाजार इलाके में स्थापित सोवा बाजार क्लब भारतीय फुटबॉल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये पहला भारतीय क्लब था जिसने

किसी आधिकारिक फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया। श्रोताओं, उस समय ब्रिटिश शासन था और फुटबॉल मुख्य रूप से अंग्रेजों का खेल माना जाता था, पर भारतीय टीमों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन सोवा बाजार क्लब ने इस भेदभाव को चुनौती दी और उन्होंने शील्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और भारतीय खिलाड़ियों की क्षमता को साबित किया। इस तरह से सोवा बाजार क्लब ने साबित किया कि भारतीय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में आगे बढ़ सकते हैं, और इसी से प्रेरित होकर मोहन बागान, ईस्ट बंगाल जैसे क्लबों का उदय हुआ। साथ ही भारतीय क्लबों ने ब्रिटिश टीम के खिलाफ जीत हासिल कर राष्ट्रवादी भावना जगाई। आज भी सोवा बाजार क्लब का नाम भारतीय खेल प्रेमियों के दिल में है।

सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मेरियन डिक्रूज की आवाज़ों में जयदीप साहनी का लिखा और सलीम सुलेमान का संगीत बद किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था चक दे इंडिया।

और अब कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में फिल्म जगत की बातें। जी हां, आज फिल्म जगत के उन दिलकश अभिनेता की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही युवाओं के दिलों पर राज कर लिया था। जी हां, वो हैं अभिनेता कुमार गौरव। कुमार गौरव का असली नाम मनोज तुली है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1956 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। उनकी मां का नाम शुक्ला कुमार था, जो हिंदी फिल्मों के बेहल परिवार से ताल्लुक रखती थी। अपनी पढ़ाई शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल से उन्होंने पूरी की और साल 1981 में कुमार गौरव ने राहुल रावेल की फिल्म लव स्टोरी से डेब्यू किया था। फिल्म में उनकी जोड़ी विजेता पंडित के साथ थी और इसमें उनके पिता राजेंद्र कुमार ने भी सपोर्टिंग रोल किया था। फिल्म की कहानी आर डी बर्मन का यादगार संगीत और कुमार गौरव का मासूम चेहरा सब ने मिलकर उन्हें ब्लॉकबस्टर बना दिया। रातों रात कुमार गौरव युवाओं के आइकन बन गए। आज उनका जन्मदिन है और उनको जन्मदिन के हम शुभकामनाएँ देते हैं और सुनते हैं उन्हीं के द्वारा अभिनीत फिल्म लव स्टोरी फिल्म का ये गाना।

बनाई थी आरडी बर्मन ने। और श्रोता, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की एक मधुर आवाज की, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा और कई क्षेत्रीय भाषाओं तक अपनी खूबसूरत गायकी से लाखों दिलों को छू लिया है। जी हाँ, वो हैं पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर। उनका जन्म आज ही के दिन 1976 में मुंबई में हुआ। वे एक संगीत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी माँ एक प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायिका थी, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही संगीत की बारीकियाँ सिखाई। महालक्ष्मी ने हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा ली और मुंबई के आरए पुनार कॉलेज में ग्रेजुएशन भी किया। महालक्ष्मी ने साल 1997 में शंकर एहसान लॉय के साथ फिल्म 10 से अपना डेब्यू किया था और लगातार उनका सफ़र आगे बढ़ा और उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ें दी हैं। वे एआर रहमान, संगीतकार शंकर एहसान लॉय, अनु मलिक, जतिन ललित जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी वो अपनी आवाज़ कई फिल्मों के लिए वो दे रही हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं 1920 एविल रिटर्न्स फिल्म का ये गाना।

1920 एविल रिटर्न्स फिल्म का ये गाना था महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। और अब श्रोताओं, चलते चलते मौसम का हाल बताते चले आपको। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं, समय शहर में मानसून ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विभाग ने 12 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 जुलाई को भी जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। और इस बीच में शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से मुझे यानी गीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: Skateboard.
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन की ठीक 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
3: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
2: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
4: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में मौसम की बातें।

आज कार्यक्रम में मौसम की बात है दोस्तों। मौसम चाहे कोई भी हो, गर्मी सर्दी या बरसात का, पर एक मौसम होता है मन का, एक मौसम होता है सदाबहार प्यार का। और स्थिति सदाबहार प्यार के मौसम में एक ही ख्वाहिश रहती है कि हरा भरा रहे प्यार का ये अंकुर। बस यही तमन्ना कि जब कुछ खोजने तले, जब कुछ पाना चाहे तो वो मिल जाए, और दिल की सतह पर बस एक ही नाम हो,

और आज हम कर रहे हैं दोस्तों मौसम की बातें। कहते हैं ना दोस्तों कि मौसम सुहाना हो तो मन मयूर नाच उठता है, खिल और ऐसे में प्यार के पंक्षी थिरकते हैं साथ साथ और कुछ इस तरह बयां करते हैं दिलों की जज्बात को।

खूबसूरत मौसम के साथ दोस्तों, जब हम उड़ते बादलों को देखते हैं तो लगता है कि काश हम भी उसके साथ उड़कर देखें कि आकाश के पार क्या है। कुछ ऐसा ही हाल होता है मन का। मन के आकाश में रंगों का महल अपने आप बन जाता है और इसमें हम किसी के साथ जीने का आनंद लेने लगते हैं और संवार लेते हैं अपने साथी के प्यार से अपने जीवन को।

आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीतों को आपने सुना वे थे बागी, पाकीज़ा, आक्रमण और बंदिश। आवाज़ें थी मोनाली ठाकुर, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा कुमार कमाल अमरोही और आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया मीट ब्रदर्स गुलाम मोहम्मद और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ।

भावगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के ठीक 12:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

सप्ताह का समापन दिन शनिवार। बहनों, हमारे हिस्से जब आता है ये दिन, तो दिल करता है कि सप्ताह भर की भाग दौड़ के बाद थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए, प्रकृति के करीब जाकर महसूस किया जाए परिंदों की चंचलता, फूलों की सुंदरता और हवाओं की मीठी ठंडी लहर।

0: कार्यक्रम अंगना में आप सभी बहनों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। मानव सभ्यता प्रकृति के आंचल में ही तो जन्म लेती है, पनपती है, और ये जो प्रकृति माता है वो हम महिलाओं के लिए भगवान से कम नहीं। भूमि, वन, जल, सूरज और चांद को हमने समय समय पर पूजा है, इनकी वंदना की है, आराधना की है। तुलसी का बिरवा, पीपल, बरगद, आंवला, नदी, खेत, इन सबको संवारने में हम महिलाओं ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। बहनों, वैदिक काल से लेकर आज तक प्रकृति को बचाने में हमारा जो योगदान रहा है वो अतुलनीय है। प्रकृति भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अहम हिस्सा है, और बात भारतीय ज्ञान परंपरा की हो या आदिवासी ज्ञान परंपरा की, प्रकृति का स्थान महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य झारखंड में तो प्रकृति का सौंदर्य और इसका आशीर्वाद हर कण में दिखाई देता है। आइए आज हम इन सभी विषयों पर बात करते हैं डॉक्टर साकरू मुर्मू जी से। और बहनों, ये भेंट वार्ता आधारित है बाह्य ध्वन्यांकन पर। साकरू जी, सबसे पहले आप हमारी बहनों को अपने बारे में बताएं।
1: जी जोहार, मेरा नाम डॉक्टर साकरू मुर्मू है। मैं सुंदरनगर जमशेदपुर झारखंड से हूँ। अभी कॉलेज व्याख्याता हूँ और संथाली महिलाओं पर भी मैंने शोध किया है।
0: हमारे राज्य की महिलाओं का जीवन प्रकृति के करीब है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: झारखंड की महिलाओं का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे जंगल, पहाड़, नदी और खेतों के साथ अपना दैनिक जीवन बिताती हैं। जैसे कि सुबह उठते ही झाड़ू के साथ ही गोबर करना, इस तरह से दिन की शुरुआत होती है। और फिर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी से भोजन पकाना, मिट्टी के टुकुच हांडी में भात पकाना, केलांग छोटा हांडी जिसमें सब्जी बनाया जाता है, इस तरह से इनकी दिन की शुरुआत होती है। सुबह से शाम तक वे जलावन की लकड़ी, महुआ, साल के पत्ते, साग, जंगली फल और औषधियां पौधे एकत्र करती हैं, और खेतीबाड़ी के समय पर खेतीबाड़ी में भी पुरुषों के साथ बराबरी से काम करती हैं।
0: कहते हैं कि पारंपरिक ज्ञान परंपरा को बचाकर रखने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इस विषय पर आपके विचार क्या हैं?
1: पारंपरिक ज्ञान को लेकर के मैं सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो बाबा होम्योपैथिक के डॉक्टर हुआ करते थे। वो ऑफिस में काम भी करते थे और घर में इस तरह से जो गरीब लोग आते थे उनका इलाज भी करते थे। तो जब कुछ प्रेग्नेंट औरत आती थी, गरीब रहती थी, बोलती थी कि दादा मेरा मतलब पति उतना कमाता नहीं है, उतना खाने पीने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए बहुत कमजोरी फील कर रही हूँ, तकलीफ हो रही है मुझे, मैं क्या करूँ, कहाँ से मैं अच्छा खाना पीना जुगाड़ करूँ। तो बाबा बोलते थे कि आप घर में माड़ पानी, माड़ भात तो बनाते हैं, गरम माड़ पीजिए, मुनगा साग खाइए, मुनगा साग को का जो सूप है उसको हम लोग संथाल में मुनगा रासे बोलते हैं, जिसमें लहसुन कूट कर मिलाया जाता है, तो उसको रेगुलर पीजिए। फिर एक डांगरा कटा आड़ा होता है जो कुइला रठा भी बोला जाता है, तो वो सब खाएंगे तो आपका शरीर में ताकत बढ़ेगा। और फिर आदिवासी घरों में प्रायः मुर्गी पालन, बकरी पालन और देसी गाय ये सब हुआ करती थी। अभी थोड़ा कम है लेकिन गाँव में अभी भी है। तो उनको कहने लगते थे कि आप घर में देसी मुर्गी है तो उनका अंडा खाइए, बकरी का दूध पीजिए, इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि महिलाएं पारंपरिक ज्ञान में सबसे बड़ी संरक्षक मानी जाती है। वे बच्चों को लोक गीतों, लोक कथाएं, रीति रिवाजों और मातृभाषा सिखाती है। औषधियां, पौधों की पहचान, बीजों का संरक्षण कैसे करना है, कौन सा बीज किस समय लगाने से उसकी उपज अच्छी होगी, इस तरह से उनको पारंपरिक खेती के तरीके बताती है। भोजन करने मतलब बनाने की जो विधियां हैं, किस तरह से बिना तेल से साग पकाना है फिर भी वो स्वादिष्ट लगती है, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्यतः महिलाओं के माध्यम से ही ये सारी चीजें होती हैं। और इसी प्रकार से वे संस्कृति और प्रकृति दोनों की ही रक्षा करती है।
0: साकरो जी, झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई सारे ऐसे त्योहार हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारी बहनों को आप इस विषय पर कुछ बताएं।
1: जी, सबसे पहले तो हमारी जो साल की गिनती शुरू होती है वो माघ बोंगा से होती है, नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो प्राकृतिक जब मतलब नया फूल पत्ते निकलते हैं वहीं से पूजा करके हम लोग की शुरुआत होती है। इसके बाद आदिवासी में कोई बाहा सरहुल जैसे मागे के बाद से, इसी तरह से सभी आदिवासी इस नव वर्ष को मनाते हैं। और इसके बाद में मार्च में ही एक होता है, आजकल बहुत कम हो गया है, सकाम बापला। सकाम बापला में होता है कि पट्टों का शादी किया जाता है, दो पट्टों का, एक को स्त्री माना जाता है एक को पुरुष, और वो शादी होता है, इस तरह से भी एक रिवाज है। इसके बाद होती है रोजो परब जो जून में होती है, जिसमें झूला भी लगाया जाता है। और इसके बाद आती है गोमहा परब। गोमहा में शहर के लोग जो है रक्षाबंधन मना रहे हैं, लेकिन असल में गांव में इस तरह से कुछ नहीं है। गांव में हम लोग गोमहा परब में जो रोको जिनको बोला जाता है गोमहा, हाँ, खेतों में जो होते हैं उन सब का भी वो पीठा बनाया जाता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो खाना है। और गोमहा परब में एक नृत्य होता है रिंझे और डांठा, जिसमें करम का पूजा होता है और इसके बाद में इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद होती है दशाई परब। दशाई परब में ऐसा मान्यता है कि दुर्गा देवी और दुर्गा दो भाई थे, वो लोग अपने बहन आइनम और काजल को खोजने निकले थे और उसके बाद वे नहीं मिलते हैं, तो भेष बदल करके उनको खोजने के लिए दशाई पर्व में पुरुष जो है स्त्रियों का भेष बदल करके गांव-गांव घूमते हैं। और उसी लोकगीत में वो सारी कहानियां है कि देवी रे दुर्गा भय आप तो कहाँ चले गए, और इस तरह से वो लोग उनको खोजते हैं। इसके बाद आती है सोहराय पर्व। सोहराय पर्व में तो कृषि से जुड़ी हुई है, पशु की इसमें जो हम लोग विशेष पूजा करते हैं, अच्छी फसल हो की भी कामना करते हैं। फिर है आघाड़ बोंगा। आघाड़ बोंगा में आघाड़ दिसंबर का मंथ में होता है और उसके बाद में संक्रांत। तो इस तरह से प्रकृति से ही सारी पर्व हमारी जुड़ी हुई है।
0: प्राकृतिक उपचार की बात अगर हम करें तो इसमें भी पर्यावरण का काफी अहम योगदान रहता है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम प्रकृति से अपने छोटे मोटे घरेलू उपचार कर सकते हैं?
1: सबसे पहले बोलना चाहूंगी जो हमारे खेतों में बगान में भी होती है कहीं कहीं पे लव कसरी जिसको ब्रह्मी बोला जाता है, फिर उली मिट्टी साग है जो खट्टा खट्टा लगती है, ये भी घास की तरह ही उगती है। फिर गिट्टी अड़ा है, खापरा अड़ा है, ये सब जो है पेट से ही रिलेटेड है, पेट की समस्याओं में इन सागों से उपचार किया जाता है। फिर है बीर कोहंडा जो जैसे कहीं पे चोट लग जाती है तो उसका रस जब लगाया जाता है तो खून बंद हो जाता है एंटीबायोटिक की तरह। और दूसरी है मुनगा साग। मुनगा तो घर घर में होती ही है आदिवासी घरों में, और ये भी एक औषधि ही है। हाँ, बारिश के मौसम में उपी निकलते हैं चीटी की तरह, चीटी के जो पर होते हैं उसी तरह से लगते हैं लेकिन उनसे थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो इनको भी हम लोग चावल के साथ में भून करके खाते हैं जिसमें काफी पौष्टिकता रहती है और ये सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। महुआ के फूल और अन्य स्थानीय जड़ी बूटियों का उपयोग भी कई पारंपरिक उपचार में किए जाते हैं। हल्दी का प्रयोग भी घाव सब में भरने और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। गिलोय भी गांव में अक्सर पाए जाते हैं जिनको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे कई वैद्य जंगलों में मिलने वाले जड़ी बूटियों से उपचार वगैरह करते हैं।
0: समझना और सीखना चाहें तो प्रकृति से हमें जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। साकरो जी, आप क्या कहना चाहेंगी?
1: जी, इसके बारे में कवि मन जानी मन ने वंदना जी ने बहुत अच्छा ही लिखा है। आदिवासी स्त्रियों को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए पहले मैं वो बताना चाहती हूँ कि पहाड़ी नदी की तरह चंचल होती है आदिवासी स्त्रियाँ, पोखरे की तरह गंभीर, घर के बीचों बीच खड़ा मजबूत धरना की तरह, और आर्थिक सांस्कृतिक पौष्टिकता के लिए महुआ सी लगती है। महिलाएं अपने समुदाय की रीढ़ है, सरल सहज अपने खेतों खलिहानों जंगल पहाड़ों से बिंबों को चुनती बीती और बितियाती है। इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकृति हमें संतुलन और सह अस्तित्व का संदेश देती है। पेड़ हमें निस्वार्थ सेवा और दान करना सिखाते हैं। नदियाँ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऋतुओं का परिवर्तन हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जंगल हमें जैव विविधता, सहयोग और एक दूसरे पर निर्भर रहने का महत्व बताते हैं। प्रकृति का संरक्षण ही मानव जीवन की सुरक्षा है।
0: साकरु जी, आपने अपनी संस्कृति के लिए और अपनी संस्कृति की महिलाओं के लिए बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है, तो क्या विशेषता आप देखती हैं अपने सभ्यता में, अपनी संस्कृति में?
1: जी, संथाल संस्कृति की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रकृति को परिवार का सदस्य माना जाता है। जैसे जंगल, पेड़, नदी, पशु पक्षियाँ, मिट्टी, गोबर, ये सभी सम्मान और हमारे संस्कृति का आधार है। सामूहिक श्रम, आपसी सहयोग, अतिथि सत्कार, सामुदायिक एकता, महिलाओं का सम्मान, लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक जीवन शैली इस संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं। संथाल समाज यह सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिए और आगे बढ़े।
0: आप हमसे जुड़ी और आपने भारतीय ज्ञान परंपरा और आदिवासी परंपरा में महिलाओं की भूमिका और प्रकृति से महिलाओं के जुड़ाव पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कभी बहुत बहुत धन्यवाद।

1942 अ लव स्टोरी मैंने अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। इस फिल्म का ये गीत संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। पेरेंटिंग 365 डेज की ड्यूटी है बहनों, और अक्सर इसमें खुशी की अनुभूति तो होती ही है, पर कभी कभी चुनौतियां भी कम नहीं होती। बच्चों के करीब रहते हुए हमें उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर भी देना होता है, पर साथ ही उन पर नजर भी रखनी होती है। और ये तभी संभव है जब हम एक संतुलित और परिपक्व सोच के साथ पेरेंटिंग का काम करें। हम कह सकते हैं कि एक आइडियल पेरेंट्स बनना बड़ा ही मुश्किल काम है, पर फिर भी अगर हम संवाद बनाए रखें और बच्चों को सही और गलत की बात बताते रहें, तो हम उन्हें जिम्मेदार बना सकते हैं। संवाद के कारण कभी भी बच्चे के मन में पेरेंट्स को लेकर कोई निगेटिव थॉट नहीं आएंगे, और उनमें अपने गुस्से पर, अपने निगेटिव एटीट्यूड पर नियंत्रण रखने की भी समझ आ जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे बच्चे अपनी दुनिया को भी हमारी नजरों से देखते हैं। कई बार बच्चों में कुछ बुरी आदतें भी आ जाती है और कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं। एक आदत गुस्सा करने की भी है, जिसे हम आजकल अधिकतर देख रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहनों जानना होगा कि इस गुस्से के पीछे कारण क्या है। कई बार किसी तरह का दबाव या पढ़ाई को लेकर जो टेंशन होता है, उसके कारण भी बच्चे इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं और कभी कभी उनका गुस्सा बढ़ जाता है। ये बात भी हम सभी समझ रहे हैं कि आजकल बच्चे फोन और सोशल मीडिया के इतने करीब हो गए हैं कि उनके अंदर सामाजिकता का जो भाव है वो कम होता जा रहा है, और इसके लिए भी उनके अंदर गुस्सा और झुंझलाहट की जो बात है और जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। कम अटैचमेंट के कारण भी बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों ही अपने काम में या अपनी दुनिया में कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं। इससे भी बच्चों के अंदर क्रोध और तनाव उत्पन्न होता है। तो जरूरी है कि हम बच्चों की भावनाओं को समझें, उनसे संवाद करें, कभी जरूरत पड़े तो खुद को भी बदलें, उनको भी कभी कभी उनकी गलती का एहसास दिलाएं, और साथ ही घर में एक ऐसा माहौल बने जहां बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबका सम्मान हो। कई बार तो सिर्फ आपसी बातचीत से ही हम बच्चों को अपने करीब ला सकते हैं और उनके अंदर जो गुस्सा करने की प्रवृत्ति है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहनों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, और जब भी हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो हमें भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके कारण जो समाज और पारिवारिक संरचना में बुरा असर पड़ रहा है, उस पर भी चिंता उत्पन्न होती है। बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, और इस कारण ही जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो सभी को ऐसा लगता है कि ये पुरुषों का काम नहीं बल्कि महिलाओं का काम है। यानी परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखने का उत्तरदायित्व महिलाओं को लेना होता है। गर्भधारण को रोकना है या और कोई गर्भ निरोधक प्रयोग करना है तो ये महिलाओं के शरीर पर ही किया जाता है। पुरुषों की भागीदारी इस दिशा में नगण्य होती है। कई बार यह भी महसूस किया गया है कि परिवार नियोजन के लिए जितने भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं वो भी महिलाओं को उद्देश्य करके रचे जाते हैं, और उसमें भी पुरुषों को छूट दी जाती है। यहाँ तक कि परिवार नियोजन से संबंधित विज्ञापन में भी महिलाओं से संबंधित जो विधि है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और इसलिए भारत में पुरुषों को इस दिशा में शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या को कैसे सीमित करें, इस दायित्व पर बात करनी होगी, और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही अपने आपसी समझ और सोच से रास्ता निकालना होगा। जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण जैसे पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करेंगे और पुरुषों की भागीदारी को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इसकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। परिवार में संतानों की बढ़ती संख्या और बेटों के इच्छा में बेटियों को जन्म देते रहने की सोच बढ़ती चली जाएगी। जागरूकता अभियान के साथ साथ
पुरुषों को भी आगे आना है और महिलाओं को भी अपने परिवार के पुरुषों के साथ स्वस्थ चर्चा करके इस विषय पर जागरूक करना है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये संकल्पना, ये सोच तभी साकार होगी जब हम जनसंख्या नियंत्रण जैसे व्यापक विषय पर पुरुष और महिला दोनों को ही लक्षित करके काम करेंगे।

0: बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी रेडियो सखी कल्याणी को दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे अगले वीकेंड पर। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, मानसून का आनंद लें और अपना ख्याल रखें।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को। हम अपने श्रोताओं को बता दें हमारी इसी सभा में दोपहर 1:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। दिन में 3:05 पर सुगम संगीत के आज

0: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन का ठीक 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और ठीक 1:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
3: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
4: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को बीएलओ और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेंट्स को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ बीएलए2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें न जुड़ सके। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी है। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा खराब कानून व्यवस्था के कारण यहां निवेश आने की संभावना नहीं के बराबर है।
1: कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो काफी खराब है। आए दिन आप देखते होंगे कि अपहरण हो रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, पूरे झारखंड में स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के वातावरण में भय का माहौल हो तो फिर वहां कोई इन्वेस्ट करेगा, इसकी हमें संभावनाएं बहुत कम दिख रहा है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी वाहन लौटाने और मुख्यमंत्री से किसी भी तरह की नाराजगी की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार या मुख्यमंत्री से उन्हें कोई गला सिकवा नहीं है। श्री किशोर ने कहा कि उन्होंने किसी विवाद के कारण नहीं बल्कि केवल व्यवस्था की मौजूदा खामियों पर सवाल उठाए हैं।
2: सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुख्यमंत्री जी से कोई गिला शिकवा नहीं। ये व्यवस्था पर कि राज्य का पुलिस महानिदेशक वित्त मंत्री के पद का जवाब 2.5 महीना तक ना दे, ये सवाल उस पर है। राज्य वित्त विभाग का संयुक्त सचिव अगर कोई पत्र लिख दे मंत्री को, ये सर्विस रूल में कहीं नहीं है अधिकार उनको प्राप्त। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने ये कदम उठाया।
0: रामगढ़ में डाक विभाग रक्षाबंधन के अवसर पर मात्र 70 रुपए में देश के किसी कोने में हस्तनिर्मित राखी भेजने के लिए विशेष स्पीड पोस्ट अभियान चला रहा है। इस विशेष शुल्क में 55 रुपए स्पीड पोस्ट चार्ज, 10 रुपए का वाटरप्रूफ लिफाफा और 5 रुपए प्रबंधन शुल्क शामिल है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रविशंकर राय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देना और डाक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। दुमका जिले के सभी गांवों को इस वर्ष दिसंबर तक ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए छूटे हुए घरों में शौचालय, सोखपीट और नापेट का निर्माण तेजी से किया जाएगा। गांवों को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने के लिए हर घर से सूखा कचरा संग्रह और उसके वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था होगी। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में जीएसएसपी पीजीटी शिक्षक नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की घूस मांगते हुए एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी सुशील कुमार को ग्रामीणों ने रंगो हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी के पास से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 6 ब्लैंक चेक और एडमिट कार्ड बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @DIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाकों में भी हाथियों के प्रवेश से स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। वन विभाग के DFO सौमित्र शुक्ल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
3: एक क्विक रिस्पांस टीम और वनरक्षी सभी लोग लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग करते हैं, हाथी को ट्रेस करके उसे सेफर इलाके में ले जाने का प्रयास। इसके लिए माइकिंग कराई जा रही, लोगों में अवेयरनेस भी करी जा रही। जहां भी हाथी होता है उसके अगल बगल के सभी गांवों को हम लोग डेली सूचित करते हैं वहां पर कि यहां पर हाथी का प्रेजेंस है और यहां पर अभी बाहर नहीं निकले या रात में या अकेले जंगलों में ना।
0: इधर स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने लगातार हो रही जंगलों की कटाई को इस समस्या का मुख्य कारण बताते हुए वन विभाग से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिव गंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाएंगे। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को यह दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम

0: रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 14 और 15 जुलाई को कई जिलों में तेज और भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे राज्य में मॉनसून की कमी दूर होने की उम्मीद है।
1: 13 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना है 13-14। सबसे बेहतर स्थिति रांची डिस्ट्रिक्ट का ही है, -11% है, और सबसे डिफिशियंट रेनफॉल है वो चतरा डिस्ट्रिक्ट का है, जो करीब -78% है।
0: रांची के युवा जिमनास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में आयोजित थर्ड ऑल इंडिया मंथन जिमनास्टिक कप के इंडिविजुअल मेन यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने कड़े संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है और अपनी सफलता का श्रेय कोच विकास कुमार गोप व मां श्वेता भट्टाचार्य को दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को बीएलओ और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जिमनास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिमनास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:22 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
4: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले बात हिंदी सिनेमा की पहली महिला हास्य अभिनेत्री और एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका की, जिनका वास्तविक नाम उमा देवी खत्री था। उन्होंने अपनी लगभग 5 दशकों के करियर में लगभग 200 फिल्मों से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अक्सर जॉनी वॉकर और महमूद जैसे दिग्गजों के साथ उनकी हास्य जोड़ियाँ बनती थी। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उमा देवी खत्री, जिन्हें हम टुनटुन के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे टुनटुन के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और वो मात्र 13 वर्ष की उम्र में भागकर मुंबई पहुंच गई। वहां उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद से मुलाकात की और अपनी जिद के दम पर बतौर पार्श्व गायिका काम हासिल किया। फिल्म दर्द में उनका गाया हुआ गीत अफसाना लिख रही हूँ बहुत प्रसिद्ध हुआ। गायन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर संगीतकार नौशाद की सलाह पर उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और साल 1950 में दिलीप कुमार की फिल्म बाबुल में उन्हें पहला अभिनय रोल मिला और उसी फिल्म के दौरान दिलीप कुमार ने उनका नाम टुनटुन रखा। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं उन्हीं के द्वारा गाया हुआ दर्द फिल्म का ये गाना।

केएल बदायूनी ने गीत लिखा था और तर्ज बनाई थी संगीतकार नौशाद ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं और अब अगला गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में हम आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है शक्ति।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ अभी आनंद बख्शी का लिखा और आर डी बर्मन का संगीत बद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हीरा पन्ना। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब इस कार्यक्रम के लिए वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और अब कार्यक्रम का अगला गाना प्यासा सावन फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में संतोष आनंद है गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में गुलशन बावरा का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत तभी आपने सुना। फिल्म का नाम था झूठा कहेगा। और श्रोता, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का एक बार फिर से आप आनंद ले सकते हैं दोपहर 2:30 बजे से।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के ठीक 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: Now we go over live to the Prime Minister addressing the Indian diaspora at a community event in Auckland.
1: अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
0: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड टुडे दैट इंडिया इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्स बाय स्ट्रेंथनिंग बोथ कन्वेंशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A indigenous stealth frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability.
2: मल्टीफंक्शन रडार के साथ
3: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टीफंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS Mahendragiri एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द Mahendragiri माउंटेन
2: Mahendragiri पर्वत के समान ही भेद और मजबूत बनाती है।
0: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. He emphasized that reading is essential for understanding the country and its people. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education.
4: The foundation of all activities that advance the nation comes from knowledge, from wisdom and from putting that wisdom into practice. And that knowledge comes only and only from libraries. I want to appeal to our younger generation, once connect with a library, you will see an amazing refinement in your personality.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Road Transport Minister Nitin Gadkari today chaired the third BRICS Transport Ministers meeting in Nagpur, Maharashtra. While interacting with media post-meeting, Mr. Gadkari said that delegates discussed the efforts to make the carbon-neutral transport in road

0: BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा पशुपालन और डेयरी पर्यटन खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं
3: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं
3: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है

0: मैन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश

0: प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है। वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी। और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप इनसे दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार बुलेटिन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने गीत लिखा है, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब अगला गाना है रफू चक्कर फिल्म से, शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज से। गुलशन बावरा है गीतकार और संगीतकार, कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा और शिवहरी का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था सिलसिला।

0: हम किसी से कम नहीं, ऐसे फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत था राहुल देव बर्मन का। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर की 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ठीक 3 बजे सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यू इंडिया समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ, बीएलओ 2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें न जुड़ सके। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी हैं। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को यह दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर गिरिडीह में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से चेताडीह मातृत्व अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने लोगों से परिवार नियोजन को अपनाने की अपील की।
1: TFR रहते वो 2.1 होता है और झारखंड का 2.4 है। तो हमने अपील किया है अपने सहिया से, विकास से और सभी स्टेक होल्डर से, इस विषय के लोगों से बात करो और परिवार नियोजन को अपनाते हुए जो देश है, ताकि हमारा स्टेट जो एक डेवलप्ड स्टेट में अपने को स्थापित।
0: दुमका जिले के मसानजोर स्थित झारखंड सरकार के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में ठहरे 48 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर शशि दिनकर मिंज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह उनका शव कमरे के बेड पर मिला। वह रांची के बरियातू के रहने वाले थे और वर्तमान में हजारीबाग सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। पुरी में रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की घोषणा की है। रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। धनबाद नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति लागू की है। विशेष परिस्थितियों में तत्काल सफाई के लिए 75 सदस्यीय क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि पार्षदों की मांग और बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रत्येक वार्ड में 13-13 सफाई कर्मियों की टीम बनाई गई है।
2: किसी वार्ड में एरिया ज्यादा रहता, वहां पर सफाई सही से नहीं हो पाती, तो ऐसे केसेस को हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम से साफ सफाई कराने का निर्णय लिया गया है। ये जो क्विक रिस्पांस टीम होगी, ये हमारे जो संबंधित सिटी मैनेजर और सहायक नगर आयुक्त है उस संबंधित अंचल के, वो डिमांड के अनुसार पर जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां उसकी आरटी टीम को भेजेंगे और त्वरित साफ सफाई करवाने की कार्रवाई करेंगे।
0: राज्य में मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई के बीच अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 जुलाई को राज्य में भारी बारिश की संभावना है। एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। मिक्स्ड रिले टीम ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया, जबकि शिवाजी परशुराम ने 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। भरतप्रीत सिंह, विनोद सिंह और प्राची अंकुश

0: संतोष देवकर ने कांस्य पदक हासिल किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का।

0: की मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्पों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित ये 2 दिन की बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यू इंडिया समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:05 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय दिन के 3:15 हो रहे हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

झारखंड के लोकगीत के साथ आज मैं राजेश जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संताली लोकगीत। कलाकार हैं उमा पद्म मुर्मू व साथी।

0: आप सुन रहे थे संताली लोकगीत, कलाकार थे उमापद मुर्मू व साथी। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के ठीक 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए विदुषी अनीता सेन से चैती गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चैती पर गायन, कलाकार थी विदुषी अनीता सेन। और इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:45 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम लोकगीत के साथ आज मैं राजेश नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं पद्मा झा।

0: आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत, कलाकार थी पद्मा झा। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ, बीएलओ 2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में हर वार्ड में डिजिटल प्रशिक्षण स्टेशन और एयरपोर्ट

0: रिपोर्ट रोड के सौंदर्यीकरण, जल जमाव के स्थायी समाधान, पार्कों के विकास और नागरिक सुरक्षा समितियों के गठन पर विचार किया गया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी हैं। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गुमला में मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के तहत परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने आज जागरूकता रथ और रैली निकाली। सिविल सर्जन डॉ. शंभुनाथ चौधरी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिव गंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह की आवाज में चंद गजलें।

0: मिताली सिंह की गाई चंद गजलों का लुत्फ उठा रहे थे आप सुगम संगीत के इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
0: इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

संदीप चौटा के संगीत से सजा बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे गाया था अलीशा चिनॉय, सोनू निगम और साथियों ने।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, सुखविंदर सिंह, सुजेन डिमेलो और साथियों की आवाज़ें थीं पार्टनर फिल्म के इस गीत के लिए। इसे लिखा था संजय छैल ने, धुन बनाई थी साजिद वाजिद ने।

दीवानापन फिल्म के इस गीत को गा रहे थे सुखविंदर सिंह, अदनान सामी, फाल्गुनी पाठक और साथी। समीर की शब्द रचना थी, संगीत था आदेश श्रीवास्तव का।

दिल तो बच्चा है जी, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, कुणाल गांजावाला और साथियों का गाया। संजय छैल थे शब्दकार, संगीतकार संदीप शिरोडकर।

साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में फैज़ अनवर के बोल आप सुन रहे थे। दिलीप सेन समीर सेन की बनाई तर्ज पर फिल्म थी द डॉन, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी इसी सभा में रात 8 बजे से भी। आप हमारा प्रसारण FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुन रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार मुख्यांश सुनिएगा।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में हर वार्ड में डिजिटल प्रशिक्षण स्टेशन और एयरपोर्ट रोड के सौंदर्यीकरण, जल जमाव के स्थायी समाधान, पार्कों के विकास और नागरिक सुरक्षा समितियों के गठन पर विचार किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल युवक का रिम्स के रांची में इलाज चल रहा है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची, उर्वरक संबंधी सूचना चार्ट तथा वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। और गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के नीरज हाजरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP डॉ. विमल कुमार ने SDPO

0: खोरी महुआ अमरेंद्र कुमार से पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट मांगी है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार, यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और आज के सफर को और भी शानदार बनाने के लिए मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त मानव घोष। दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। जब आप जनसंख्या या आबादी शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? शायद ट्रैफिक जाम, रेलवे स्टेशन की खचाखच भीड़, या फिर किसी फॉर्म को भरने के लिए एक लंबी कतार, है ना? हम अक्सर इस भीड़ को देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे अचानक जनसंख्या की बात क्यों कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि यार दोस्तों, आज 11 जुलाई है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने केवल आबादी गिनने के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की थी। और दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति तक ये बुनियादी अधिकार तभी पहुंच सकते हैं जब सरकार के पास हमारे जरूरतों के सही आंकड़े हो, है ना? और ये सटीक आंकड़े हमें कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं जनगणना यानी सेंसस से। जनगणना केवल लोगों की गिनती मात्र नहीं, यह देश का सामाजिक एवं आर्थिक आईना है। जनगणना के आंकड़ों से ही हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितने युवा हैं, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे हैं और कितने लोग शिक्षित हैं। यही आंकड़े सरकार को स्कूल, अस्पताल, बिजली और बुनियादी योजनाओं को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर आती है। अक्सर देखा जाता है कि जब जनगणना करने वाले सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर आते हैं तो कई बार लोग सही जानकारी नहीं देते हैं। कुछ लोग अपनी आय, शिक्षा या परिवार के सदस्यों की संख्या जैसी बातें भी छुपा लेते हैं या तो गलत बता देते हैं। दोस्तों, यही हमें जागरूक होना है। जनगणना में सही और सटीक जानकारी देना हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखिए, ये 147 करोड़ आबादी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। केवल इसे एक सकारात्मक एवं सही दिशा देने की आवश्यकता है। तो अगली बार जब भी जनगणना करने के लिए सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे तक आते हैं तो उन्हें सटीक एवं सही जानकारी दे और जनगणना के विषय में भी अपने आसपास के लोगों को भी जरूर जागरूक करें। याद रखिए दोस्तों, आज भारत जनसांख्यिकीय

0: लाभांश की स्थिति में खड़ा है। आइए सुनते हैं अर्थशास्त्र की शिक्षिका AJK कॉलेज आसमबनी की आरती कुमारी से जनसंख्या पर उनके विचार।
1: नमस्कार, मैं हूँ आरती कुमारी और मैं अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर अपनी राय देना चाहती हूँ जिसे अक्सर लोग समस्या समझ जाते हैं, वह है भारत की बढ़ती जनसंख्या। लोग कहते हैं भारत में बहुत भीड़ है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं एक अर्थशास्त्री के तौर पर यह कहती हूँ कि नहीं, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले हमारे पास युवा हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश बूढ़े हो रहे हैं। जापान, चीन, यूरोप में काम करने वाले लोग कम पड़ रहे हैं, लेकिन भारत में 65% लोग आज 35 साल से कम उम्र के हैं। मतलब हमारे पास 90 करोड़ से ज़्यादा काम करने वाले हाथ हैं। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। दूसरा, हमारे पास सबसे बड़ा बाज़ार है। 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ उपभोक्ता। इसी वजह से दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत में आना चाहती है। इसी वजह से UPI चला, डिजिटल इंडिया चला, स्टार्टअप चला। जहां मांग होगी वहां रोज़गार अवश्य होगा। तीसरा, हमारे पास शोधकर्ता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की कमान एक भारतीय के हाथ में ही है। नासा से लेकर सिलिकॉन वैली तक हर जगह भारतीय टैलेंट मौजूद है। भीड़ में से ही प्रतिभा निकलती है। जहां जनसंख्या ज़्यादा होगा वहां आइडिया ज़्यादा होंगे। अब इसमें दिक्कत कहां है? दिक्कत जनसंख्या में नहीं है दोस्तों, दिक्कत है शिक्षा में, स्किल में और स्वास्थ्य संबंधी निवेश में। हम 140 करोड़ लोगों को पढ़ा लिखा कर, हुनर देकर मानव पूंजी बनाएंगे। यही 140 करोड़ लोग भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जैसे जापान के पास संसाधन नहीं थे, सिंगापुर के पास जमीन नहीं थी, फिर भी वो आगे बढ़े क्योंकि उनके पास इंसान थे, मानव हाथ था। भारत के पास जमीन भी है और इंसान भी। इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि भारत की जनसंख्या कमजोरी नहीं है, ये 140 करोड़ सपनों की ताकत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ।
0: आप सुन रहे थे अर्थशास्त्र की शिक्षिका आरती कुमारी के विचार। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी भीड़ का हिस्सा हो तो उसे अपनी या अपनी देश की मजबूरी मत समझिएगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या कोई समस्या नहीं बल्कि हर समस्या का समाधान है। और बस आवश्यकता है हम सब मिलकर एक दिशा में कार्य करें। और जब इतने सारे लोग मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो साहिल लुधियानवी साहब के लिखे वो शब्द एकदम सच साबित होते हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आइए सुनते हैं इसी एकजुटता और ताकत का एहसास कराता ये बेहद खूबसूरत

आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी एवं आशा भोसले ने। गीतकार है साहिल लुधियानवी और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने। साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं होता, बल्कि वह आवाज की अंतरात्मा होता है। मेरे युवा साथियों, ये विचार महान साहित्यकार भीष्म साहनी जी के है, जो उनके संपूर्ण साहित्य की पहचान भी है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए याद करते हैं उस महान लेखक को। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। उन्हें पंजाबी, उर्दू, संस्कृत के साथ साथ रूसी भाषा का भी ज्ञान था। वे एक कहानीकार या उपन्यासकार नहीं थे, बल्कि एक शानदार नाटककार, शिक्षक और अभिनेता भी थे।

0: उन्होंने हानुष और कबीरा बरा बाजार में जैसे नाटकों से रंगमंच को नई आवाज दी। प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव के रूप में उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़े रखा। उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1969 में पद्मश्री और 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। परंतु दोस्तों, भीष्म साहनी जी की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है 1974 में प्रकाशित उनका कालजयी उपन्यास तमस। तमस का शाब्दिक अर्थ है अंधकार या अज्ञानता। यह उपन्यास 1947 के विभाजन और उस दौरान भर के सांप्रदायिक दंगों की उस विभीषिका पर आधारित है जिसे साहनी जी ने अपनी आंखों से देखा था। तमस सिर्फ भारत पाकिस्तान विभाजन और सांप्रदायिक दंगों भर की कहानी नहीं है, यह हमें संदेश देती है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ और नफरत के बीच रातों रात पीढ़ियों के प्यार को भी निगल जाते हैं, कैसे सीधे साधे लोग अज्ञानता के अंधेरे यानी तमस में घिरकर अमानवीय हो जाते हैं और उस गहरे अंधेरे के बीच भी कोई ना कोई इंसानियत की लौ जलाए रखता है। तमस का साहित्यिक और सामाजिक महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आइए सुनते हैं मन की कही एवं गुल्लक जैसी चर्चित पुस्तकों की रचनाकार एवं जमशेदपुर की लेखिका सविता सिंह मीरा जी ने तमस उपन्यास पर क्या कहा है।
1: आदरणीय श्रोतागण और साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के महान शिल्पी और प्रगतिशील लेखक भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहे हैं। भीष्म जी का जब भी जिक्र आता है हमारे जेहन में विभाजन की विभीषिका को बयां करने वाली उनकी कालजयी रचना तमस का नाम सबसे पहले उभरता है। सन 1973 में प्रकाशित यह उपन्यास आज आधी सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। साहित्यिक दृष्टिकोण से बात करें तो तमस भीष्म साहनी जी के लेखन का शिखर है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कोई पारंपरिक नायक या खलनायक नहीं। भीष्म जी ने किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखने के बजाय पूरी जनता, परिस्थितियों और उस समय के तनाव को ही मुख्य चरित्र बना दिया है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, स्वाभाविक लेकिन भीतर तक झकझोर देने वाली है। उन्होंने बिना किसी बनावट या लाग लपेट के सांप्रदायिकता के उस क्रूर चेहरे को बेनकाब किया जो पर्दे के पीछे बैठे चंद स्वार्थी लोगों द्वारा तैयार किया जाता है। अब अगर हम इनके सामाजिक महत्व को देखें तो तमस समाज के लिए एक कड़वा आईना और बहुत बड़ी चेतावनी है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे एक मरी हुई गाय या सुअर का इस्तेमाल करके दो समुदायों के बीच नफरत की आग भड़काई जाती है। तमस का तो शाब्दिक अर्थ ही होता है अंधेरा, किंतु यह अंधेरा बाहर का नहीं बल्कि इंसानी दिमाग में फैली नफरत, अज्ञानता और कट्टरता का है। साहनी जी ने बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाया कि दंगों की इस आग में हमेशा गरीब, बेकसूर और आम इंसान ही झुलसता है, जबकि नफरत की राजनीति करने वाले सुरक्षित बच निकलते हैं। भीष्म साहनी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम तमस के संदेश को सिर्फ एक कहानी न समझकर अपने जीवन में उतारे। यह उपन्यास हमें सचेत करता है कि यदि हम अतीत की गलतियों से सीख नहीं लेंगे तो नफरत का यह अंधेरा हमारे भविष्य को भी निगल सकता है।
0: सविता जी की बातों से यह स्पष्ट होता है कि तमस महज इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि आज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। याद रखिए दोस्तों, जब जब

जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, गीतकार है साहिल लुधियानवी और इसे संगीतबद्ध किया है एन दत्ता ने। दोस्तों जरा सोचिए, आज के दौर में जब भी हम किसी विवाह समारोह, किसी बड़े खेल आयोजन, किसी विशाल सम्मेलन का हिस्सा बनते हैं तो उसकी चकाचौंध और शानदार व्यवस्था देखकर अक्सर हमारे मन में विचार आता है कि आखिर इतने बड़े आयोजन को इतनी आसानी और बिना किसी गलती के कैसे संभाल लिया गया। दोस्तों इसी सवाल के जवाब में छिपा है युवाओं के बीच तेजी से उभरता हुआ एक बेहतरीन करियर विकल्प, जिसे हम इवेंट मैनेजमेंट यानी कार्यक्रम प्रबंधन कहते हैं। वर्तमान समय में इवेंट मैनेजमेंट का दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है। आज हर कोई अपने खास पलों को यादगार बनाना चाहता है, लेकिन किसी के पास आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उसे योजनाबद्ध रूप से आयोजित करने का समय नहीं है। यही जरूरत पड़ती है एक इवेंट मैनेजर की। तो अगर आप में नेतृत्व क्षमता है, आप टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अचानक आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान निकाल सकते हैं और आपका संवाद कौशल भी अच्छा है, तो यकीन मानिए यह क्षेत्र आपके लिए ही बना है। भारत में शादी समारोह से लेकर कॉरपोरेट इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से लेकर सरकारी कार्यक्रमों तक हर जगह प्रशिक्षित इवेंट मैनेजरों की मांग बढ़ती जा रही है। तो यदि आपको इस क्षेत्र में रुचि है तो आप 12वीं या स्नातक के बाद इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर कॉरपोरेट इवेंट मैनेजर, इवेंट प्लानर, पब्लिक रिलेशन विशेषज्ञ बन सकते हैं और चाहे तो अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और चुनौतियों में भी अवसर तलाशना जानते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट आपके लिए एक बेहतर करियर साबित हो सकता है। तो दोस्तों अपनी खूबियों को पहचानिए और नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि याद रखिए नए रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। इसी के साथ आज की कुछ ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर है। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापार, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाने पर द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मानव घोष आपसे लेता हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी।

युवाणी युवा श्रोता सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 2.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोताओं, आसमान पर जब काले बादल घिरते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं, तो मन में एक अलग ही सुकून जाग उठता है। ये वही पल

0: होता है जब गर्मी से तपती धरती को राहत मिलती है और वातावरण में एक खास ताजगी भर जाती है। और इसी ताजगी भरे माहौल के बीच हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने, जिसे आप सुन रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। और आप सभी को रश्मि तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वार्ता के साथ। जनसंख्या वृद्धि चुनौतियां एवं नियंत्रण, आलेख है कोयली साहू का और वाचन स्वर है मालती चौधरी की। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, मातृ स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन और सतत विकास सहित जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस बढ़ती वैश्विक जनसंख्या से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक होने का अनुमान है, जिससे जनसंख्या नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और पर्यावरणीय स्थिरता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से युवा, को स्वस्थ, गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन जीने का अवसर मिले। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। यह विषय सतत भविष्य के निर्माण में युवा सशक्तिकरण, प्रजनन अधिकारों, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सरकारों और समुदायों और युवाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और सतत विकास में योगदान दे सकें। विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास 11 जुलाई 1987 को शुरू हुआ, जब दुनिया की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई, जिसे 5 अरब का दिन के रूप में माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंताओं के जवाब में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की और तब से यह हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आधिकारिक तौर पर विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी मुद्दों, प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज UNFPA जनसंख्या, युवा, लैंगिक समानता और सतत विकास को उजागर करने वाले वैश्विक अभियानों का नेतृत्व करता है। जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करके सतत विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक जनसंख्या संबंधी चुनौतियों और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, परिवार नियोजन और प्रजनन संबंधी जानकारी पूर्ण विकल्पों को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना, युवाओं को उनकी आशाओं और आकांक्षाओं

0: आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना, जिम्मेदार माता पिता बनने और स्वस्थ पारिवारिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, किशोरों के स्वास्थ्य और सुचित निर्णय लेने में सहायता करना, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना, समावेशी और टिकाऊ जनसंख्या नीतियों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या से संबंधित मुद्दों और प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सतत विकास और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सरकार, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जानकारी पूर्ण चर्चाओं और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। जागरूकता अभियान के अंतर्गत सेमिनार, कार्यशालाएं, रैलियां और सोशल मीडिया अभियान जनसंख्या संबंधी मुद्दों और सतत विकास पर प्रकाश डालते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय निबंध लेखन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत इनमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परिवार नियोजन परामर्श, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं आयोजित की जाती हैं। सामुदायिक संपर्क के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन और स्थानीय निकाय ग्रामीण और शहरी समुदायों में जनसंख्या प्रबंधन और महिलाओं के स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। नीतिगत संवाद में सरकारें और विशेषज्ञ जनसांख्यिकी रुझानों, जनसंख्या नीतियों और समावेशी विकास पर चर्चा करते हैं। युवा सहभागिता में अंतः क्रियात्मक सत्र युवाओं को लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकारों और जिम्मेदार पितृत्व पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म जनसंख्या संबंधी चुनौतियों पर जानकारी पूर्ण सामग्री और विशेषज्ञ राय साझा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन जनसंख्या और विकास संबंधी मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन और अभियान आयोजित किया जाता है। 2026 में वैश्विक जनसंख्या लगभग 8.3 अरब होने का अनुमान है, जो लगभग 0.83% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। हालांकि विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी है, लेकिन पिछले दशकों की तुलना में वृद्धि की गति में काफी कमी आई है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार 2037 तक वैश्विक जनसंख्या 9 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, जो सतत विकास, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और कुशल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्थाओं, सार्वजनिक सेवाओं और पर्यावरण पर लगातार दबाव डाल रही है। 2026 में वैश्विक जनसंख्या लगभग 8.3 अरब होने का अनुमान है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 68.87 मिलियन लोग जुड़ रहे हैं। हालांकि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 0.83% वार्षिक हो गई है, फिर भी बढ़ती जनसंख्या सरकारों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में चुनौतियां खड़ी कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, अधिक लोगों की आबादी, ताजे पानी, कृषि भूमि, ऊर्जा और खनिजों की मांग को बढ़ा रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधन दबाव में आ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, बढ़ती वैश्विक आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए वनों, मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना आवश्यक है। आवास और शहरीकरण के मामले में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरी भीड़भाड़, अनौपचारिक बस्तियों के विस्तार और किफायती आवास की बढ़ती मांग में योगदान करती है। अधिक लोगों की आवश्यकता के कारण अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मियों, दवाओं और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक निवेश करना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण स्कूलों, शिक्षकों, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता बढ़ जाती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। बेरोजगारी हर साल लाखों युवा कार्यबल में शामिल होते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता के लिए रोजगार सृजन आवश्यक हो जाता है। पर्यावरण का क्षरण, उपभोग में वृद्धि से वनों की कटाई, वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान और भूमि का क्षरण होता है। जलवायु परिवर्तन में जनसंख्या में वृद्धि से ऊर्जा की खपत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई और भी अधिक जरूरी हो जाती है। बुनियादी ढांचे पर दबाव के अंतर्गत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकारों को सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता प्रणालियों, बिजली और स्वच्छ पेयजल का विस्तार करना होगा। अपशिष्ट प्रबंधन, बढ़ती आबादी, अधिक ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और अपशिष्ट जल उत्पन्न करती है, जिसके लिए कुशल पुनर्चक्रण और निपटान प्रणालियों की आवश्यकता होती है। इस तरह जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ही वैश्विक विकास एवं प्रगति का आधार है।
1: जनसंख्या वृद्धि, चुनौतियां एवं नियंत्रण, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। आलेख कोयली साहू का था और वाचन स्वर थे मालती चौधरी की।

अमित कुमार की आवाज में अभी आपने सुना तेरी कसम फिल्म का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, मुद्रा लोन योजना यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, एसएमई और एमएसएमई को लोन प्रदान करती है। श्रोता साथी, मुद्रा के तहत तीन लोन योजनाएं ऑफर की जाती हैं, जिसका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। मुद्रा योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम लोन 10 लाख रुपए है, जबकि न्यूनतम लोन राशि तय नहीं है। मुद्रा लोन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक बैंकों या लोन संस्थानों को कोई गारंटी देने या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा लोन की पुनर्भुगतान अवधि EMI विकल्पों के साथ 3 साल से 5 साल तक होती है।

श्रोता साथी, इसके लाभ की अगर बात करें तो मुद्रा लोन मुख्य रूप से दुकानदारों, व्यापारियों, विक्रेताओं और एमएसएमई को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा लिया जा सकता है। मुद्रा योजना भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अंतर्गत आती है। लोन राशि का उपयोग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट सर्विस के रूप में भी किया जा सकता है। श्रोताओं, सभी गैर कृषि व्यवसाय मतलब आय सृजन गतिविधियों में लगे छोटे व्यवसाय मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ मुद्रा कार्ड के माध्यम से

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना महान फिल्म का ये गीत अनजान का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए अनुमति।

ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कल कारखाने। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने को है कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार बुलेटिन सुनिएगा, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है,

0: ऐसे कितने ही नाम हैं, यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
0: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था,

हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6:10 हुए हैं, हमारे केंद्र से आप सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।

0: झारखंड के लोकगीत के साथ मैं राजेश जुहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं मेघनाथ महतो।
1: ये पर्यावरण गीत है जिसमें कहा जा रहा है, धरती माता का श्रृंगार नदी, झरने, पहाड़ और पेड़ पौधे होते हैं, जिसे प्रकृति भी कहते हैं। यहाँ इन्हीं पेड़ पौधों से वर्षा होती है, हमें शुद्ध हवा मिलती है, फल फूल और जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। इसे हमें सुरक्षित रखना है ताकि आने वाले दिनों में संकटों से हम बचे रहें। इस नागपुरी लोकगीत में स्वर है मेघनाथ महतो और साथियों का।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था FM 92.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय शाम के 6:20 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत समाचार बुलेटिन सुनिएगा बस कुछ ही पलों में।

0: भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक संबंधान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः संबंधान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपान्तरितवन्तौ। अनेनैव सह त्रिंशदधिक-2000तम वर्षं यावत् उभयदेशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकात्मकं विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभयदेशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य अक्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सिन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिक रूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्तावितः सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्ट चर्च तः क्वींसटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्यमुना उभय देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रावोचत् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा क्षमतां सहैव आधुनिक प्रौद्योगिकीं सुदृढीकृत्य एकां बलशालिनीं आत्मनिर्भरां रक्षासेनां निर्माति। तेन प्रतिपादितं यत् आगामी युद्धेषु कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः एवमेव अन्येषां नवीन तन्त्राणां प्रयोगः भवितुमर्हति, परञ्च अन्तिमरूपेण विजयः राष्ट्रिय संकल्पेन वीर सैनिकैः सक्षम सैन्यशक्त्या एव प्राप्स्यते। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी पारम्परिक सैन्यबलं च परस्परं पूरकौ स्तः। सहैव भारतम् आत्मनिर्भर भारत संकल्पस्यान्तर्गतं द्वयोः अपि क्षेत्रयोः उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधा

संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए कृषक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

रिमझिम बारिश की फुहारें जैसे जैसे तेज बारिश का रूप लेती है, खेती किसानी करने वाले लोगों के चेहरे पर खुशियां नजर आने लगती है, क्योंकि इसी बारिश का इंतजार आप पूरे साल करते हैं, है ना। कार्यक्रम कृषि जगत के आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपका वही जाना पहचाना दोस्त राजेश जोहार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता, विषय होगा जनसंख्या नियंत्रण, जागरूकता जरूरी। साथ ही होगी खेतीबाड़ी से संबंधित कुछ बातें और आपके मनोरंजन के लिए होगा एक मधुर लोकगीत, लेकिन आगाज इन जरूरी बातों के साथ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अर्थात PMKSY 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय योजना है। भारी निरंतर व्यय के साथ इसका उद्देश्य प्रत्येक खेत के लिए पानी सुरक्षित करना और संसाधनों के संरक्षण के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देकर प्रति

जल्द अधिक फसल के माध्यम से उपयोग को अनुकूलित करना है। साथ ही सिंचाई के लिए नए जल स्रोत बनाना और पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत करना है। इस योजना के तहत प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता भी दिया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने, भूजल को पुनर्जीवित करने और वर्षा जल संचयन में सुधार करने के लिए जल संभर प्रबंधन को बढ़ाता है। यह योजना हर खेती को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के आदर्श वाक्य के साथ निरंतर अपने उद्देश्य में सफल होता नजर आ रहा है। इसके अंतर्गत सामान्य किसानों को सिस्टम की लागत का 45% तक, लघु एवं सीमांत किसान को प्रणाली लागत का 55% तक सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी और लाभों के लिए आवेदन करने हेतु किसान अपने राज्य के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालयों में जा सकते हैं। इसके लिए जरूरतमंद किसान के पास भूमि स्वामित्व का दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।

0: कृषक मित्रों, बढ़ती जनसंख्या आज हमारे बीच एक चुनौती बनती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कई दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि हम स्वयं भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करते रहें। जनसंख्या नियंत्रण, जागरूकता जरूरी, इसी विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा से ली गई भेंट वार्ता। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का क्या दुष्प्रभाव पूरे सोसाइटी, पूरे समाज पर पड़ता है और इसके नियंत्रण के लिए काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं उस पर काम हो रही है और क्या क्या प्लानिंग है और सरकार इसमें क्या कर रही है, इस बारे में विशेष जानकारी के साथ आज हमारे बीच हैं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम होते हैं या फिर क्या दुष्परिणाम हम अभी तक देखते आ रहे हैं?
1: उसके जो दुष्परिणाम जो है वो सभी स्तर पर आज के दिन में दिखाई दे रही है
0: जी।
1: आप कहीं भी जाते हैं, चाहे वो ट्रेन की सफ़र करना हो या कैब बुक करना या रोड पर गाड़ी चलाना
0: जी,
1: वो सभी जगह जो हम लोग भीड़ भाड़ देख रहे हैं वो सभी जो हमारी जनसंख्या वृद्धि जो है, अब जो हम विश्व में एक नंबर पर लगभग आ चुके हैं
0: जी,
1: वो उसी का दुष्परिणाम है। उसी के चलते जो है रोजगार की भी कमी हो रही है, खाद्यान्न की कमी आगे होकर और बढ़ेगी, पानी की कमी तो हमें देखने के लिए मिल रही है और भीड़ भाड़ तो देख ही रहे हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहला उपाय है हमें अपनी जनसंख्या को स्थिर करना और उसके बाद नेक्स्ट फेज में जो है जनसंख्या कम करना।
0: अच्छा,
1: फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो हमारे विभाग द्वारा सालों भर चलते रहती है
0: जी,
1: लेकिन आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है और उसको हम लोग हर साल मनाते हैं और हर साल हम लोग प्रण लेते हैं कि जनसंख्या हम लोग कम करेंगे
0: जी,
1: कम
0: जी,
1: करेंगे
0: जी।
1: उसका रिजल्ट आ रहा है और हमारी कोशिश है कि हम लोग जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़े पहले और उसी को लेकर इस बार का जो हमारा प्रोग्राम है, जो स्वास्थ्य विभाग की प्रोग्राम है, जनसंख्या स्थिरता अभियान 2026 का आयोजन हम लोग 11 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक कर रहे हैं
0: जी। इसमें क्या क्या है?
1: इस बार का हमारा जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस पर वह है जब बच्चों में हो सही अंतराल।
0: अच्छा,
1: परिवार बने स्वस्थ एवं खुशहाल। कहने का मतलब हुआ कि दो बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल होना ही चाहिए, उससे माँ का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है और जो बच्चे हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होता है और जो पहला वाला जो बच्चा है माँ को उसे देखभाल, विशेष देखभाल करने की जो ज़रूरत है उसकी समय मिल जाती है
0: जी।
1: हमारे विभाग के

0: तरफ से 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक विशेष प्रचार अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान।
1: जी
0: और उस जागरूकता के लिए हमारे जिला में जितने भी हमारे HWC हैं, CSC है या सदर अस्पताल है, विलेज लेवल पर भी तरह तरह की एक्टिविटी की जाएगी
1: जी
0: जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े। उदाहरण के तौर पर वाहन से प्रचार किया जाएगा,
1: जी
0: प्रोमिनेंट जगह पर बैनर पोस्टर लगाई जाएगी जिससे लोगों को हमारे यहाँ जो जो विधियाँ हम लोग परिवार नियोजन से संबंधित कर रहे हैं उसकी जानकारी होगी। हमारे जो आम सेंटर है जिसको हम लोग HWC भी बोलते हैं,
1: जी
0: वहाँ पर गांव के लोगों को बुलाकर स्लोगन राइटिंग, वाद विवाद,
1: जी
0: इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। और उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो हमारी प्रोग्राम चल रही है उससे संबंधित रहेंगे ताकि उससे उनमें जागरूकता बढ़ सके।
1: जी
0: जो हमारी हार्ड टू रीच एरिया है
1: अच्छा
0: वहाँ पर वाहन का पहुँचना दिक्कत होता है, तो वहाँ पर जो हमारी प्रचार होगी वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से होगी
1: जी
0: और 11 तारीख आज से वो चालू हो जाएगी। जहाँ भी
1: हमें
0: हमारी प्रोग्राम होगी वहाँ पर हमारी जो अस्थाई विधियाँ जो है जिसमें कि कंडोम आती है, ओरल पिल्स आती है,
1: जी
0: IUCD आती है, इसको डिस्प्ले भी किया जाएगा
1: अच्छा
0: और उनको जानकारी दी जाएगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक इंजेक्टेबल अंतरा भी है
1: अच्छा
0: जो 3 महीने पर एक बार लेना पड़ता है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। और परमानेंट जो विधि हुई वो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी है। ये दोनों प्रोग्राम हमारे यहाँ सालों भर चलती है, लेकिन ये जो 11 तारीख से जो हमारी पखवाड़ा चालू हो रही है उसमें 20 से लेके 31 तक
1: अच्छा
0: अलग अलग दिनों पर हमारे CSC एवं सदर अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक विधि से
1: अच्छा
0: जो महिला बंध्याकरण किया जाता है उसका विशेष कैंप का आयोजन किया गया है।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी विधियाँ बताई और आपने अवेयरनेस के तरीके बताए। शहर में तो काफ़ी लोग जागरूक रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो काम आप लोग कर रहे हैं निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। आप अपने तरफ से आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो जनसंख्या नियंत्रण से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जाने और थोड़ा अवेयर हों इस बारे में?
0: हम लोग विभाग के तरफ से पूरे साल हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि जो हमारे विभाग के तरफ से जो प्रोग्राम चलाई जा रही है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचे
1: जी
0: और उसमें जो है जो गांव में जो है वो हमारे सहिया जो है वो हर एक महीने एक मीटिंग करते हैं गांव के लोगों के साथ जिसमें कि जो मौसम के अनुसार जो बीमारी होती है
1: जी जी
0: उसके बारे में जो डिस्कशन होता है
1: उसी
0: उसी
1: बीच
0: में
1: में
0: फैमिली प्लानिंग वाली इशू भी डिस्कस होती है। तो सालों भर उसकी जानकारी दी जाती है और उसका रिजल्ट अच्छा है। NSV एंड जो महिला बंध्याकरण है उसकी भी जो हमारी अचीवमेंट है, जिला की अचीवमेंट है वो अच्छी रहती है और जो अस्थायी विद्या है उसकी भी अचीवमेंट अच्छी रहती है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारा जो देश है अभी भी रूढ़िवादी परंपरा पे चल रहा है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि परिवार के लोग जो परिवार नियोजन के उपाय हैं वो अपनाना नहीं चाहते हैं। इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है और कैसे लोगों को जागरूक कर रही है?
0: इसके लिए जो हमारी 11 जुलाई से जो विशेष पखवाड़ा चल रही है
1: जी
0: उसमें हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर हमारे सहिया द्वारा
1: जी
0: सास बहू पति सम्मेलन यानी तीनों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। उस क्षेत्र के जितने भी सास बहू एंड पति हैं सभी को बुलाया जाता है और उन्हें परिवार नियोजन से संबंधित हमारी जितने भी विधियाँ हैं
1: जी
0: उसकी जानकारी दी जाती है ताकि तीनों को क्लियर हो सके। एक्चुअली
1: अच्छा
0: होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई महिला को समझाया तो फिर उनका बोलना रहता है कि हम अपने सास से पूछ के बताएंगे या फिर पति
1: जी
0: से
1: जी
0: पूछेंगे।
1: हाँ
0: उसी के लिए ये सास बहू पति सम्मेलन शुरू किया गया है ताकि तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके मन में जो भी गलत भ्रांतियाँ होगी उसको दूर किया जाता है और उसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी उपयोगी जानकारियाँ दी। उम्मीद है हमारे जो श्रोतागण हैं चाहे वो शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, आपके द्वारा बताए गए बातों पर ध्यान देंगे, और जो आने वाले दिनों में आप लोगों का जो प्रोग्राम चल रहा है या होगा उसमें वो भाग लेंगे, और फैमिली प्लानिंग के बारे में थोड़े जागरूक होंगे और जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता जरूरी, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा से ली गई भेंट वार्ता। किसान भाइयों, यदि आप कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी पालन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुर्गी फार्म आबादी से दूर और शांत जगह पर होना चाहिए। शेड में ताजी हवा और धूप आने का रास्ता होना चाहिए। शेड के फर्श पर धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाएं। इसे समय समय पर बदलते रहें ताकि नमी ना रहे। छोटे चूजों को पहले 2 से 3 सप्ताह ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, इसलिए बल्ब या हीटर का प्रबंध ज़रूर करें। मुर्गियों को पीने के लिए हमेशा साफ और ताज़ा पानी दें। पानी के बर्तन दिन में 2 बार ज़रूर साफ करें। मुर्गियों की उम्र के अनुसार पौष्टिक और संतुलित दाना दें। इसमें प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। मुर्गियों में रानीखेत और गेबोरा जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से समय पर टीके ज़रूर लगवाएं। फार्म में बाहरी लोगों और जानवरों का प्रवेश ना होने दें, क्योंकि ये बीमारी और संक्रमण फैलाते हैं। अगर कोई मुर्गी बीमार दिखे तो उसे तुरंत स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर दें।

किसान भाइयों, क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और इसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। कल यानी कि 12 जुलाई 2026 को 7.1 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 86% और न्यूनतम 68% होने की संभावना है। हवा की दिशा होगी उत्तर से दक्षिण की ओर तथा रफ्तार रहेगी 16.8 किलोमीटर प्रति घंटे।

किसान भाइयों, इस मौसम में किसान मक्का फसल की बुआई करें। संकर किस्में AH421, AH58 तथा उन्नत किस्में पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4 बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। किसान पूसाचरी 9, पूसाचरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें। बीज किसी प्रमाणित सोर्स से ही खरीदें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें तथा लोबिया की बुआई का भी यह उपयुक्त समय है। यह समय मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की पौधशाला बनाने के लिए बहुत सही है। किसान पौधशाला में कीट अवरोधि नाइलोन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को कैप्टन के उपचार के बाद पौधशाला में बुआई करें।

और अब चलते चलते आइए आपको जानकारी दिए जाते हैं धान की फसल में लगने वाले कीट और उससे बचाव के बारे में। धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कीट तनाछेदक, पत्ती लपेटक और भूरा फुदका है। तनाछेदक कीड़ा तने के अंदर घुसकर पौधे को खाता है। इससे पौधे की बीज की पत्तियां सूख जाती है और बालियां सफ़ेद पड़ जाती है। इससे बचने के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अधिक प्रकोप होने पर कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। पत्ती लपेटक कीड़ा पत्तियों को मोड़कर अंदर से हरा भाग खा जाता है। इससे पत्तियों पर सफ़ेद धारियां बन जाती है। इसके रोकथाम के लिए नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग ना करें। भूरा फुदका एक ऐसा कीट है जो धान के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। यह पौधे के नीचे तने से रस चूसता है, जिससे फसल अचानक गोलों में सूख जाती है, जिससे हार्पर बर्न कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए खेत में पानी भर जाने पर उसे कुछ समय के लिए निकाल दें। इसके नियंत्रण के लिए पाइमेट्रोजीन या इमिडा क्लोरोपीट का इस्तेमाल करें। कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक। दीजिए राजेश को अनुमति। जोहार।

किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण हो रहा था इसका आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हो चुके हैं। हमारे केंद्र से आप प्रसारण शाम 7:15 के बाद सुनिएगा। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, सुनते हैं वहां के प्रसारण।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर आरटीआई के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। और रांची में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आगाज, सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची में सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर माह दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री सेठ ने कहा कि वेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार, 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर ले, किसको वहाँ परेशानी है।
0: बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह, रांची की मेयर रोशनी खलखो समेत वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी।
2: आबादी में हम लोग कंट्रोल हैं हम लोग, लेकिन एक चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाएं, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम दें उनको और हमें लगता है कि अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज है कि बेहतर इलाज हम कैसे करें।
0: इस अवसर पर बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया।

0: राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में गुमला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आरटीई मामलों के निपटारे और समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सही और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयोग लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
1: गुमला जिले में जहां मुझे जो अधिकारियों ने जो बताया हमें बैठक के दौरान कि अभी तक 2024 से लेकर के 2026 तक उन्होंने बखूबी सभी मामलों का निष्पादन भी कर, जो एक अच्छी पहल है। हम समझते हैं कि पूरे राज्य में इस प्रकार से अगर काम होगा तो आरटीआई एक्ट जो है वो प्रभावी रूप से अंतिम लोगों तक जो उसके हकदार है उन तक पहुँचेगा।
0: खूंटी नगर पंचायत के वार्ड 6 और 16 में आज कई पीसीसी सड़क मरम्मत कार्यों का शिलान्यास किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी ने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत से स्कूली बच्चों और आम लोगों की आवाजाही सुगम होगी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क और नाली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची, उर्वरक संबंधी सूचना चार्ट तथा वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो कल सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने, हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा सभा आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। देवघर के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण का कार्य तय समय सीमा में शत प्रतिशत और त्रुटि रहित पूरा किया जाना चाहिए। इसे लेकर श्री कुमार ने विशेष टीमों का गठन कर मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
2: सभी को, जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम वोटर लिस्ट पे है, सभी को दो फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के जल्द से जल्द वापस रिटर्न करिए। हम आपके फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे, हम आपके फॉर्म को मैप करेंगे आपके माता पिता के साथ, जिससे कि कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं। जिनके पास कोई मैपिंग डिटेल नहीं है 2003 का, वो भी अपना फॉर्म भर के दे, खाली फॉर्म भर के दे। 2003 का कोई हिस्ट्री नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, फॉर्म भर के रिटर्न करिए, प्रथम मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य आए।
0: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिले के कोरवा सिंदरी मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक भी घायल हुए, जिनमें से 2 ने रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक युवक का रिम्स में इलाज चल रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में आवाज उठाने के बाद धमकी देने का आरोप लगाया है। असुंता लकड़ा का कहना है कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग करने पर उन्हें उनका हॉकी करियर समाप्त करने की चेतावनी दी गई।
3: लड़कियों

0: सुरक्षा के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ तो उसमें मुझे ही धमकी। मैंने देश को मेडल दिया है, देश के लिए मैंने खेला है, देश के लिए काम किया है और धमकियां हम सुनेंगे। आज भी मैं अपनी छुट्टियां लेके जाती हूँ सिलेक्शन में। जब से ये बात पे चर्चा हुई सुधीर गोला के बात पे, उसके बाद से मुझे साइडलाइन पे रखा जा रहा है।
1: योग रांची जिला योग संघ की ओर से दो दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज रांची में शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल जूनियर वर्ग की स्पर्धाएं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर आरटीआई के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। और रांची में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आगाज, सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का किया प्रदर्शन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले में आजकल।
1: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: देश के तमाम पावर प्लांट में कोयले की बढ़ती खपत को देखते हुए कोडरमा के रास्ते ब्रिटिश काल में बने तकरीबन 120 साल की अवधि पार कर चुके तीन सुरंगों से नए वैगन के जरिए कोयले की ढुलाई शुरू की गई है। नया वैगन थोड़ा बड़ा होने के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। नए वैगन से कोयला ढुलाई की शुरुआत के मौके पर पहुँचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया कि
2: जो बनावट है उसमें थोड़ा अलग डिजाइन का है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई जो है जो नॉर्मल वैगन है उनसे अधिक है, तो कई बार जो है जो इस क्षेत्र में टनल पड़ती है उससे नहीं निकल पाती, तो उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यही सबसे छोटा रास्ता है और ये गाड़ियां जो है द्रुत गति से इस क्षेत्र से निकल सके, तो उससे जो है जो पावर हाउसेज हैं उनको कोयला सप्लाई करने में अधिक सुगमता से कर पाएंगे। सभी पावर हाउसेज जो है अपनी पीक कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर कोयला पहुँचाना भी जो है एक राष्ट्रीय दायित्व है।
1: स्वच्छ भारत मिशन फेज टू के तहत जिले के लक्ष्मीपुर गांव में बने गोबर गैस प्लांट गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस गोबर गैस प्लांट से गांव के तकरीबन 30 घरों में गैस की आपूर्ति की जा रही है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस प्लांट के संचालन से उन्हें न तो जलावन के लिए

0: लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है और न ही गैस भराने के लिए पैसे लगते हैं।
1: सुबह के गोबर लाइन में डालते हैं और लाइन रहते हैं तो गोबर को घोला करखनी, अगर बाद गैस फिर उसमें गोबर जाते हैं दूसरा में तीसरा में जाते हैं, उसमें सूख जाते हैं तो फिर निकाल के अपन खेत में खाद खेत में डालते हैं। वैसे तरीके से मैंने काम कर रहे हैं और घर घर गैस जलाते हैं शाम सुबह। पहले तो लकड़ी से जलाते हैं, लकड़ी से तक गैस मिला गैस वाला पैसा तभी बच जा रहा है।
0: राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर कोडरमा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कोडरमा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने जमशेदपुर में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह अपराधियों ने पुलिस जीप से खींचकर एक युवक की हत्या कर दी जबकि दूसरे को अधमरा कर दिया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है।
2: जमशेदपुर के नगरी में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के भयन में घुस करके अपराधी दो युवाओं पर हमला करने का काम किया। पुलिस की जीप से निकाल करके युवा को पटक करके उस पर चापड़ से हत्या करने का काम किया। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन पुलिस वहां पर खड़े खड़ा रह करके मुखदर्शक बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलती है और ये प्रमाणित होने का काम जमशेदपुर में किया कि पुलिस के सामने अपराधी दो दो युवाओं को एक अधमरा है तो जिंदगी और मौत से कलकत्ता में जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ एक माँ पिताजी के लाडले जो घर का एक अकेला चिराग था अकेला बेटा था उसकी हत्या भी चौराहे पर कर दी। इससे स्पष्ट हो गया कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल पूरी तरह से विफल है।
0: हाल के दिनों में जिले में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा है। कई मामलों में पुलिस ने सफलतापूर्वक कांड का उद्भेदन किया है तो कई मामले में अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
3: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी यार।
1: प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन और जिले में आजकल का प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 7:15 हो चुके हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए

0: ये था बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम आप कुछ ही देर में सुनेंगे।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर,
5: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
7: बातों मुलाकातों के साथ
5: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
5: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से आप सुन रहे थे अंग्रेजी कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा।

0: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: श्रोताओं, हमारी इस सभा में अब से थोड़ी देर बाद फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत का। राष्ट्रीय प्रसारण के आज के कार्यक्रमों में रात 8:45 पर सुनिएगा हिंदी समाचार बुलेटिन समाचार संध्या। देश दुनिया की खबरें अंग्रेजी में न्यूज़ @9 अंग्रेजी समाचार बुलेटिन सुनिएगा रात 9 से।

सामयिक मुद्दों पर अंग्रेजी में इंटरव्यू का प्रोग्राम होगा स्पॉटलाइट रात 9:15 पर। संस्कृति भारती राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका प्रसारित होगी रात 9:30 से। और रात 10 बजे का समय संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। आज इसमें डॉक्टर डी माधुरी का कर्नाटिक शैली में वीणा वादन सुनिएगा। डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुनवाएंगे आपको संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे से। राष्ट्रीय प्रसारण के ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय निकाल सुनते रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के कार्यक्रम।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: इस समय रात के 8 बजे हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने आशा फिल्म से आपको सुनवाया, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और साथियों ने। जतिन ललित ने इसकी धुन बनाई थी। फिल्म थी यारा दिलदारा।

टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये नाम था फिल्म का जिसका गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल, सोनू निगम और साथियों का गाया हुआ। विक्की प्रसाद ने इस गीत की रचना की थी, सुरों से सजा

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
1: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।
5: संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गीत।

नदीम श्रवण के संगीत से सजा समीर का लिखा गीत आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म से। स्वर था साधना सरगम, कुमार सानू और साथियों का।

0: अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्शी थे शब्दकार, संगीतकार राहुल देव बर्मन। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है ज्वारभाटा।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे थे आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। सुनिएगा राष्ट्रीय प्रसारण के कार्यक्रम। इसमें पहले होंगी देश दुनिया की खबरें, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में। समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य

0: विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436793084915523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार

0: की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है।

0: भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janaki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों,

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो यो नथो चोड़ी नोंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी, फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है, इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा में आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारम्भ करो, इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भोरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो, इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ, आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई के रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं, रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक तो ये पथी पांचन होता है, आम केला कनस सपुरी सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का पूरा जल, लवंग जायफल दे के चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का भजन का जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
0: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा, ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा कोहरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास हैं।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है, वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन, माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए, और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती है। इस बार देखिए, वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संसेशन के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है, और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। आम ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं, जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए, जिसमें खट्टे मीठे हैं, और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो तो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
6: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, जन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
1: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी ये थे हमारे ध्रुव वह के जन्म है। उस दिन हम अटारी में रहे, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले आई। वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लड़का ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करा। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ। माँ गावे है

बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रही हूँ, कबड्डी खेलत रही हूँ, सूर खेलत रही हूँ, खो खो खेलत रही हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। और ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है। तो सुने पर आते कि के वो छोटे से चटाई निकाली से कथे में बैठ बेटा, में बैठ कतका कन सुने ऐसे कि कही। तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाई रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आँखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हमका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उन मन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते ते हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बार मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागती।

0: कर सकत रहे हो, ओला एति तेती बहका सकत रहे हो, ओमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हो, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खाती हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाथे आ तो बोले भूरियारो चुचकारो ये गार्डर ही ते गार्डर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मोला बहुत है अच्छा लगते, लेकिन मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा बुईर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्योटल भेटे हूं गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजय लक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपु विजय लक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामवरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामवरपु विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Ee Mani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी इज अकंपनीड बाय श्री महादासु येडकोंडलु ऑन द मृदंगम एंड श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ऑन द घटम।
0: डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी बिगिन्स हर कॉन्सर्ट विद शक्ति गणपतिम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तैया भागवतार इन नाटरागम रूपक तालम।

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Rithigaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami.

0: यह था संन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this, we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।